एफ एम बैंड 101.9 MHz पर ये विविध भारती का उदयपुर केंद्र है एफ एम रेडियो लेक सिटी। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: राष्ट्रपति आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर है। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती।

वंदनवार सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति प्रेम स्नेह जैसे भाव भी तो ईश्वर की रचना है। ये प्रत्येक जीव पर निर्भर है कि वो माया चुनता है या ज्ञान।

जब ईश्वर को सखा भाव में आत्मसात किया जाता है तो भक्ति रस कुछ अलग ही रंग लाता है। मित्र से हंसी ठठोली न हो तो भला किससे होगी।

आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत सुबह 6:35 से श्री रामचरित मानस सुन सकेंगे। आज सुनिए 237वां भाग। संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनेगा आज। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रूण मजुमदार। 7 से भूले बिसरे गीत, सुबह 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 से समाचार प्रभात, सुबह 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 से चित्रलोक। 8 के फनकार ये कार्यक्रम सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज सुन सकते हैं 10 से। और इस कार्यक्रम में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार।

निबंधकार आलोचक अनुवादक संपादक समीक्षक लेखक हरिशंकर राणी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। सुबह 11 बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। दोपहर 3 बजे से सखी सहेली कार्यक्रम और 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन सुन सकते हैं कार्यक्रम और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा, कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आज इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में निर्देशक फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी सुन सकते हैं, प्रस्तुति जुबैर खान की। 8:00 सुनिए रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन सुरेंद्र कौशिक का, निर्देशन सुशील बैनर्जी का, 8:15 से चित्रलोक। 8:45 से सुन सकते हैं समाचार संध्या, 9 बजे से सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। रात 10 बजे से छाया गीत। से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 237वीं कड़ी।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुन पा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला

0: की दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोनू दादा, आपका एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो बताइए, आज की इस कड़ी में अपने खजाने से कौन से मोती बिखेरेंगे? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो कि बांसुरी के जन्मदाता, बांसुरी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे?
1: इंग्लिश में दो लाइनें कही जाती हैं, When there was nothing in the world, still there was sound. And that sound was sound of nature. जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी नेचर था।
0: बिल्कुल।
1: जीव जंतु, आदि मानव या कुछ भी, उससे भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियां थी, जंगल थे, वन थे, तो बांस भी था। तो ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से बांसुरी की शुरुआत हुई, ये गलत है। उससे पहले भी बांसुरी थी।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए, मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद जाके सिलचर, असम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था
0: जी,

0: ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से बांसुरी की शुरुआत हुई ये गलत है, उससे पहले भी बांसुरी थी।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए, मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद जाके सिलचर, असम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था
1: जी जी।
0: और मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हवा जब चल रही तो बहुत लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे, तो वो कीड़े मकोड़े जो छेद करते हैं वहां से इंसान को बजाने की प्रेरणा मिली उन कीड़े मकोड़ों की वजह से, और बांसुरी लोक संगीत में बजती रही
1: जी।
0: और शास्त्रीय संगीत में तो सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है, और रावण हत्ता के रूप में बजता था क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे, और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा, और लोक वाद्य कोई भाटियाली धुन या कचरी बनारस की बजेगी, और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे
1: जी।
0: तो इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है
1: जी, जी, जी।
0: संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं
1: जी, जी।
0: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी
1: जी।
0: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया,
1: क्या
0: और सा कैसे बजेगा
1: हाँ।
0: इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है, कोई साइंस नहीं है ना उसमें
1: जी जी।
0: उसमें सिर्फ आत्मा है, जब वो राग रागिनी में आ जाता है तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है,
1: सुर आ जाता है फिर
0: जी,
1: सुरों की संख्या
0: जी। तो उन्होंने तीन ढोल बंद रखना, तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको।
1: अच्छा,
0: इतनी क्या बड़ी उनकी, और ये जो छोटी उंगली है उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी, इसीलिए जो पन्ना बाबू को फॉलो करते हैं वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं, और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह होल से बजाते हैं।
1: वाह क्या बात है।
0: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सांस से पातक भीड़ देखे, मैं बजा के सुना रहा हूँ
1: जी।
0: ऐसे फ्रेज जो बांसुरी में बजते नहीं थे वो बजने लगे, और आज उसके बाद चार प्रमुख बांसुरी वादक पन्ना बाबू से प्रेरणा लेके बने, पहले बुजुर्ग पन्ना बाबू के सनी लॉ उनके जवाई, क्योंकि पन्ना बाबू की बेटी से उन्होंने शादी की थी
1: जी जी।
0: देवेंद्र मुर्देश्वर जी,
1: जी
0: उसके बाद मेरे गुरुजी बड़े थे वो पंडित विजय राघव राव जी,
1: जी
0: और उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, और इन तीनों से छोटे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरि जी ने तो कमाल ही कर दिया
1: जी।
0: मैंने एक बार हरि जी को एक नाम दिया था, जन्माष्टमी के दिन पीटीआई ने मुझसे पूछा कि हर साल हम लोग एक बांसुरी वादक से बात करते हैं, इस साल वो आप हैं रोनू दादा। उसी साल मुझे कुमार गंधर्व अवार्ड मिला था
1: जी जी,
0: 2006
1: जी जी।
0: तो बोले आप पन्ना बाबू और हरि जी को कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि पन्ना बाबू देवकी है और हरि प्रसाद जी माँ यशोदा है।
1: क्या बात है, गजब।
0: क्योंकि माँ देवकी ने जन्म दिया मगर बांसुरी को पाल पोस्ट के बड़ा किया हरि जी ने, उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू का जो अधूरा काम था असामयिक वो तो 60 भी पूरा नहीं कर पाए,
1: बहुत कम उम्र में चले गए। बिल्कुल,
0: 53-54 साल की उम्र में गुजर गए, तो बहुत सारा काम अधूरा था, उस अधूरे काम को इन चारों के साथ मिलके हरि जी ने फिर पूरा किया। फिर वो पीटीआई ने पूछा तो फिर आप क्या है? मैंने कहा मैं सुदामा हूँ।
1: गजब क्या बात है।
0: मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ।
1: अद्भुत।
0: मेरे पास कुछ नहीं है, वो झाल मुड़ी में जो मुड़ी डालते हैं वो मैं तौलिया में लपेट के कृष्ण को खिला दूंगा, खुश हो जाएंगे मेरा वादन सुन के।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भी बांसुरी को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई और बांसुरी एकदम से प्रचलित हो गई। दादा आपने बांसुरी में कुछ नए प्रयोग किए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
0: मुझे ऐसा लगता था कि बीनकारी हम जो है
1: जी,
0: जो कि रुद्र वीणा को बीन भी बोलते हैं
1: जी,
0: तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि बीन मतलब वो सपेरा जो बीन बजाता है वो बीन, तो बीनकार मतलब बीना
1: जी,
0: वादक के अंदर जो घसीट का जो काम होता है वो बांसुरी में आप ऐसे कह सकती है कि वो मैंने सबसे

0: एक्सीट और आंदोलन
1: जी,
0: जो चीज रुद्र वीणा में बजा के सारे तो भैरव में कोमल ऋषभ अति कोमल है और धैवत भी अति कोमल है, मतलब कोमल से भी और थोड़ा सा उतरा हुआ,

0: अब मंद्र संतक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी,
0: और बहुत सारे बांसुरी वादक मुझे फोन करते हैं कि पंडित जी ये जो नीचे के सा मंद्र सप्तक
1: जी
0: खरज का काम के लिए ये जो आपने बनाया और इसको कॉन्सर्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने, तो खुशी होती है कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा
1: जी
0: मेरे वादन में मुझे ढूंढा करेगी दुनिया।
1: क्या बात है।
0: तो मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, मगर मेरा शंख बांसुरी बच्चे बजाएंगे, बुजुर्ग बजाएंगे, मुझे उसकी खुशी है। तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं कि ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, आप मत बजाइए, ऐसी मैंने दृश्यता कभी नहीं की। देखिए शंख बांसुरी में भैरव का, भैरव में शंकर भगवान की जटाओं का जो गहरापन है भोले बाबा का, वो देखिए।

0: अति सुंदर, अति सुंदर। तो दादा, ये जो शंख बांसुरी आपने बजाई, इसकी विशेषता अभी बताएंगे हमारे श्रोताओं की, क्या विशेषता है?
1: विजय राघव राव जी के बाद भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी मैंने सीखा
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ मॉस्को गया था 1988 में
0: जी, जी।
1: भारत का फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहाँ चल रहा था, और आप जैसे जानते हैं रशिया शुरू से हमारा दोस्त रहा है
0: जी।
1: और रशियन लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वहाँ जब सब लोग सीख रहे थे, मेरे सीनियर गुरु भाई पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी जो मेरी जनरेशन का ही है, शुभेंद्र राव, ये लोग मंद्र सप्तक का काम बहुत अच्छा कर रहे थे
0: जी, जी।
1: मैं नहीं कर पा रहा था
0: जी।
1: छोटी अंगुली जो जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी आप मध्यम तक इधर जा सकेंगे
0: जी, जी, जी।
1: उसके नीचे क्या
0: जी।
1: तो उस बात ने मुझे विचलित कर दिया,
0: क्या बात,
1: मन व्यथित हो गया।
0: अच्छा,
1: कि जो गुरुजी बजा रहे हैं सितार में, वो मेरे बांसुरी में क्यों नहीं आ रहा है। वहां से मैं भारत आया और काम में लग गया, और जो मेरी ओरिजिनल शंख बांसुरी है वो अभी घर में, उसको मैंने एक याद, एक संग्रह करके उसको मैंने रख दिया है। अब उसको बाहर ले जाने में डर लगता है। उस वक्त एक बैंबू जो आप देख रहे हैं शंख का, इसकी आवाज शंख जैसी।

0: और मंदिर सप्तक
1: जी
0: में चला गया फिर मैं नीचे के सातक।
1: बिल्कुल, और जब कभी जब थियरी में लोग सीखेंगे बांसुरी की थियरी के बारे में, तो इस शंख बांसुरी को उन किताब के पन्नों पर अंकित किया जाना चाहिए। और
0: किया भी है, दीपक करके लालमणि सिंह वो सरदार है, तो उन्होंने पूरा PhD ही किया मेरे ऊपर।
1: क्या बात है।
0: उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा लिखा जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी ये लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। उन्होंने कहा कि रोनू के वादन में आमूल चूल परिवर्तन रविशंकर जी के पास जाने के बाद हुआ। उनका बजाने में जो कृंतन जमजमा जो होती है ना, ये करेंगे तो गमक हो जाएगा। उसके पहले का जो है उसमें स्ट्रेस दिए बगैर जो जमजमा का थाने जो विलायत खान साहब जिसके बादशाह माने जाते थे।
1: क्या बात है। तो ये जो जानकारियों का खजाना है, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा आज की कड़ी का समय समाप्त हो रहा है। कल ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम रेडियो लेक सिटी सवेरे के 7 बजे है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त यहाँ शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

भारत महमूद की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। बारादरी फिल्म के इस गीत को लिखा खुमार बाराबंकवी ने और इसे संगीत से सजाया शौकत दहलवी नाशाद ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं आप।

0: देवदास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे साहिल लुधियानवी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
4: एक बेटी की यादों में उसके पिता
5: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
4: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
5: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
4: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने वाले अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
5: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
6: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
4: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

नूरजहां की आवाज में दुपट्टा फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मुशीर कासमी के बोल, फिरोज निजामी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर भूले मिश्र गीत। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है।

तलत महमूद की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल आप सुन रहे थे। पंडित हुसनलाल भगतराम का संगीत आदिल जहांगीर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे। छिड़ता है मोहब्बत का राग, बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में उड़न खटोला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा। नौशाद का संगीत कार्यक्रम भूले बिसे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा दें। मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म श्री 420। सुनिए ये गीत।

0: श्री 420 फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना और इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का ये गीत, नीरज ने से लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम हेरा ही प्यार के विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लो। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए मन मंदिर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: मन मंदिर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। और इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: जलवायु
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा गुल्लू।
5: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
6: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं करा सकते।

0: मेला फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस दिन

परवाना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में कैफ निजामी के माफ कीजिएगा कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों की, फिल्म पराया धन।

0: पराया धन फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही हम हेराई प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच

0: बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित

0: पढ़ने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और थार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के दम पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR हरियाणा।

0: दैनिक जागरण ने खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चार धाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाया तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड एनुअल समिट विद हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाई ताकाईची इन न्यू दिल्ली टुडे। EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership.

0: हर सुबह उम्मीद का नया पैगाम लेकर आती है। हर किरण जिंदगी को नई पहचान दे जाती है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपका एक मुस्कुराना किसी और की पूरी दुनिया महका जाती है। बिल्कुल, तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जुड़ जाइए अपने शहर की अपनी आवाज कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर से। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नेहा श्रीमाली और मेरे साथ हैं
1: अनीता।
0: तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: और नमस्कार के साथ ही अपने श्रोताओं को बता देते हैं नेहा कि आज हमारे ग्रीन एंड गेटअवे गुरुवार में क्या है खास।
0: बिल्कुल, मॉर्निंग ब्रीफ में हम बात करेंगे विश्व खेल पत्रकारिता दिवस की, साथ ही होगी प्रमुख स्थानीय खबरें, अपडेट देंगे हम T20 विश्व कप और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। साथ ही इको टॉक में हम बात करेंगे वन महोत्सव जो 1 से 7 जुलाई के बीच में आयोजित किया जा रहा है।
1: और उसके बाद यात्रा संवाद में हम बात करेंगे गुप्तेश्वर महादेव की और उसके साथ ही बताएंगे आज के दिन के इतिहास के बारे में कि आज 2 जुलाई को क्या हुआ है खास।
0: बिल्कुल, और आज के इस खास प्रोग्राम में होगी कुछ खास बात रेखा सोनी से योग और स्वास्थ्य विषय पर, और इसके साथ ही होगा मनोरंजन तो मुस्कान और ढेर सारी बातें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।
1: जी।

0: तो अनीता चार कदम, बस चार कदम हमारे साथ चल दो और हमारे सारे श्रोता भी हमारे साथ चल दिए इस नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में साथ साथ बढ़ते आगे बढ़ते हैं और अब हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हैं स्थानीय खबरों के बारे में। तो उदयपुर की प्रतिभाशाली खिलाड़ी यशविका अनेजा ने महाराष्ट्र के नासिक में 25 से 28 जून तक आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ यशविका राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली खिलाड़ी बन गई है। उनकी सफलता से न केवल उदयपुर और मेवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर उदयपुर पुलिस ने कल से 1 माह तक चलने वाले महिला सुरक्षा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। जुलाई में प्रत्येक बुधवार आयोजित होने वाले अभियान के पहले दिन पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की संपर्क सभा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं और छात्राओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया गया।
0: बिल्कुल। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं कल और आज सुबह खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में। तो श्रोताओं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबलों में रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। कल और आज सुबह तक खेले गए मुकाबलों की झलकियों की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया। कप्तान हैरी केन ने 2 शानदार गोल दागकर टीम को अगले दौर में पहुंचा दिया। इसी तरह बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से मात दी। बेहद रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और अंतिम 16 में जगह बनाई। साथ ही अमेरिका ने बोस्निया

0: और हर्जेगोविना को 2-0 से हराया। मजबूत रक्षात्मक प्रदर्शन और सटीक आक्रमण के दम पर अमेरिका ने ये मुकाबला अपने नाम किया।
1: और अब बात करें महिला T20 विश्व कप की, तो टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बेथ मूनी को 36 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी की बदौलत महज 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लगातार एक और बार महिला T20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब नजर रहेगी दूसरे सेमीफाइनल पर, जो आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात को 11 बजे शुरू होगा और इस मैच की विजेता टीम 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। क्रिकेट प्रेमियों की निगाह अब इस रोमांचक दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी है, जहां फाइनल का दूसरा दावेदार तय होगा।

0: नेहा, हम देखते हैं कि हर दिन कुछ खास होता है, कोई ना कोई विशेषता को लिए होता है। आज का दिन 2 जुलाई का उन खेल पत्रकारों, फोटोग्राफरों और टिप्पणीकारों, संपादकों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, उनके काम को सराहने का दिन। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस जो हर साल 2 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, आज का दिन खेल प्रेमियों के लिए खास है क्योंकि आज है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। अनिता, जब भी हम क्रिकेट मैच देखते हैं या ओलंपिक या फुटबॉल, तो हमें मैदान में खिलाड़ी दिखाई देते हैं, लेकिन मैदान के बाहर एक और टीम होती है जो हर पल की जानकारी हम तक पहुंचाती है, वो है खेल पत्रकार। बारिश हो, धूप हो, रात हो या विदेशी दौरा, हर जगह मौजूद रहते हैं ताकि हमें सही और तेज जानकारी मिल सके। आज के दिन हम उन सभी खेल पत्रकारों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने खेलों को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रेरणा बनाया है। और अगर हम बात करें इस दिवस को मनाने के लिए 2 जुलाई का दिन ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे का ये कारण है कि 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल पत्रकारों के इस शीर्ष निकाय की स्थापना हुई थी, इसलिए इसकी याद में हर साल 2 जुलाई को यह दिन समर्पित किया गया और इस दिवस की शुरुआत की 1994 में हुई थी।
0: और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में खेल पत्रकारिता में AI और आधुनिक डेटा एनालिसिस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2026 में खेल पत्रकार इस बात पर चर्चा और कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके खेल विश्लेषण को और बेहतर बनाया जाए।
1: बिल्कुल अनीता, मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ लगातार यात्रा करने वाले और कड़े डेडलाइन में दबाव में काम करने वाले खेल पत्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना भी इस साल के प्रमुख एजेंडों में शामिल किया गया है।
0: विश्व में कुछ प्रसिद्ध खेल पत्रकार हुए, उनके बारे में बात करते हैं तो बिल सिम्पसन्स ये ऐसे पत्रकार हैं जो अपने अनूठे दृष्टिकोण और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और तथ्यों को मनोरंजक अंदाज से प्रस्तुत करते हैं। शम्स चरानिया ये काफी युवा हैं, 17 साल की उम्र से खेल पत्रकारिता में अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की और 21 साल की उम्र में 2015 में याहू स्पोर्ट्स के NBA इनसाइडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया।
1: बिल्कुल अनीता, अगर प्रसिद्ध खेल पत्रकारों की बात ही हो रही है तो हम बात करेंगे बोमानी जोन्स, या पुरस्कार विजेता टीवी खेल पत्रकार हैं जो पूर्णकालिक ब्रॉडकास्टर बन गए हैं, और साथ ही बात करेंगे हम हर्षा भोगले, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय कमेंटेटरों में से एक है, उच्च सम्मानित पत्रकार और प्रस्तुतकर्ता है। एक कमेंटेटर के रूप में उनका करियर 19 वर्ष की आयु में हैदराबाद ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ। 2008 में IPL के लॉन्च के बाद भारत के खेल पत्रकारिता में जबरदस्त उछाल आया और भारत के खेल पत्रकारों के लिए संभावनाएं भी बढ़ गई।

0: तो अनीता नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे श्रोताओं को बताते हैं आज के दिन का इतिहास, यानी कि आज 2 जुलाई का दिन। तो आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। इतिहास में हर दिन अपना एक विशेष महत्व है, तो 2 जुलाई के दिन भारत और विश्व में बहुत सी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज के दिन वर्ल्ड UFO दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ष 1947 में हुए UFO या उड़न तश्तरी के क्रैश होने की याद में मनाया जाता है।
1: जी हाँ, और 1712 में ब्रिटिश के थॉमस शेवरी ने पहले भाप के इंजन का पेटेंट हासिल भी किया था। और 1843 में आज ही के दिन होम्योपैथी का आविष्कार करने वाले जर्मन निवासी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैम्यूल हानेमान का निधन हुआ था।
0: बिल्कुल, वर्ष 1997 में वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट करवाया था। और वर्ष 1950 में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ जाफर मेहर अली का आज ही के दिन निधन हुआ था।
1: 1972 में आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें तय हुआ था कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध न तो कोई बल प्रयोग करेंगे और न ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करेंगे।
0: बिल्कुल, और आज ही के दिन वर्ष 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। CST टर्मिनस को अब CSMT टर्मिनस है। वो भारत के सबसे व्यस्त स्टेशन में से एक है। ब्रिटिश काल में इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था।
1: अमेरिकी आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने 2 जुलाई 1879 को अपने पहले व्यावहारिक ताप दीप लैंप का पेटेंट कराया था। और इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया और औद्योगिक क्रांति को नई दिशा दी।
0: और इसी तरह आज ही के दिन डेजर्ट सिल्क रेशमा, भारत की प्रसिद्ध और अनूठी पारंपरिक लोक गायिका, जिन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई।

मीडियम वेव और एफएम बैंड आकाशवाणी उदयपुर पे दोनों ही चैनल्स पर आप एक साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से बीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां से बीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोक मंथन 2026 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से राजस्थान की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत पहचान दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति भक्ति विचार वीरता संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि है और हमें इस पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भारत के लोक विषय पर आयोजित हो रहा लोक मंथन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैश्विक संवाद का माध्यम बनेगा।
1: ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है। आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहर हो, स्वागत हो, वो अपने आप में निराला मिलेगा। और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। ये आज राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को का महोत्सव बनाए।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोक मंथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस अवसर पर लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आज समापन होगा। समापन अवसर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। समापन एवं पुरस्कार

0: वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे। सम्मेलन में आज डिजिटल गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर 3 प्लेनरी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपित रफीक खान चांद शेख महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है। इस पर ISI के लिए काम करने और जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक धनराशि पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई। इस मामले में जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी को गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही IAS अधिकारी भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है। कार्यवाहक CJ न्यायमूर्ति SP शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने श्री सावंत को व्यक्तिगत रूप से एसोसिएशन की प्रबंध समिति के चुनाव 3 महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 29 जुलाई तक अदालत को चुनाव कार्यक्रम से अवगत कराने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने, अवैध पार्किंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत दुपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले कल मुख्य सचिव V. श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ और जवाबदेह तरीके से काम करने के निर्देश दिए। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और चुनाव आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हो।
0: और अब मौसम। प्रदेश में आषाढ़ महीने की शुरुआत कुछ स्थानों पर बरसात के साथ हुई। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। भरतपुर में कल सुबह बरसात के बाद दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। कोटपूतली बहरोड जिले के कोटपूतली, विराटनगर और पावटा में कल देर रात हल्की बरसात से मौसम सुहावना हो गया। भीलवाड़ा में भी देर रात तेज हवा के साथ कुछ देर झमाझम बादल बरसे। इस बीच आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं तथा नम हवाएं चल रही हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया है कि वहां बादलों की आवाजाही से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी इलाकों से मॉनसून दस्तक देगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जुलाई को कोटा

0: उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कल से आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तारीख से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से बीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनल्स पर एक साथ। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नेहा और मेरे साथ हैं
2: अनीता।
1: तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं योग और स्वास्थ्य विषय पर रानी सोनी की वार्ता।
3: नमस्कार। मन को शांत कर दे जो अंतर मन से जोड़ दे, योग वो अनमोल विधा है जो हर बीमारी का रुख मोड़ दे। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा यानी रानी सोनी का सस्नेह नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होंगे। दोस्तों, सुबह की इस ताजी हवा में जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने होती है एक अंतहीन दौड़। बच्चों के स्कूल का टिफिन, ऑफिस की फाइलें, घर के अनगिनत काम, ट्रैफिक का शोर और इन सब के पीछे कहीं छूट जाता है हमारा अपना शरीर और मन। हम दुनिया भर की खबरें रखते हैं लेकिन खुद के भीतर क्या चल रहा है इससे बेखबर रहते हैं। इसीलिए आज के इस विशेष रेडियो वार्ता में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे विषय पर जो हमारी सदियों पुरानी विरासत भी है और आज के इस फास्ट फॉरवर्ड जीवन की सबसे बड़ी जरूरत भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ योग और उसके महत्व पर। अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यह चर्चा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। योग क्या है? श्रोताओ, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? किसी कठिन आसन में शरीर को मोड़ना, सिर के बल खड़े हो जाना या फिर बाबाओं को ध्यान में बैठे हुए देखना। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो रुकिए। योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या पसीना बहाने की कोई कसरत नहीं है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका सीधा और सरल अर्थ है जोड़ना। अब सवाल उठता है किसे जोड़ना? योग जोड़ता है हमारे शरीर को हमारे मन से, हमारे मन को हमारी आत्मा से। यह हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर हमें स्वयं से मिलाता है। हमारे महान ऋषि पतंजलि ने कहा था, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सरल शब्दों में कहे तो यानी मन की चंचलता को शांत करना ही योग है। आज जब पूरी दुनिया मानसिक तनाव से गुजर रही है तब यह प्राचीन विज्ञान हमें जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति सिखाता है। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि भारत की इस अनमोल धरोहर को आज पूरी दुनिया नतमस्तक होकर स्वीकार कर रही है। एक दौर था जब योग को केवल संन्यासों से जोड़कर देखा जाता था लेकिन आज यह आधुनिक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। श्रोताओ, आप सब जानते ही हैं कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत ने इसका प्रस्ताव रखा तो रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया। आज न्यूयॉर्क के

0: आकर्षण के लिए, बर्नआउट से बचने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए और तनाव को कम करने का साधन है। हमारे बुजुर्गों के लिए ये बढ़ती उम्र में जोड़ों के दर्द से राहत देने और शरीर को आत्मनिर्भर बनाए रखने का सहारा है। श्रोताओं, चलते चलते मैं बस इतना ही कहूंगी, योग को अपने जीवन का कोई टास्क या कोई काम मत बनाइए, इसे अपनी लाइफ स्टाइल बनाइए। रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट खुद को देना कोई घाटे का सौदा नहीं है, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, बस किसी सही मार्गदर्शक के साथ शुरुआत करें। जब आप खुद को ये समय देंगे तो आप पाएंगे कि आपका स्वभाव शांत, खुश मिजाज और धैर्यवान बन रहा है और शरीर ऊर्जावान बन रहा है। तो आइए आज इस रेडियो वार्ता के माध्यम से हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपने व्यस्त 24 घंटों में से कुछ मिनट अपनी सेहत के नाम करेंगे, योग अपनाएंगे और एक स्वस्थ, समृद्ध और शांत समाज का निर्माण करेंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही एक सुखी जीवन का असली धन है। इसी सकारात्मक विचार के साथ धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे योग और स्वास्थ्य विषय पर रानी सोनी की वार्ता।

0: झीलों की नगरी उदयपुर, जो अपनी झीलों, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और किंतु यहाँ कई धार्मिक स्थल, कई धार्मिक शिवालय भी हैं, जो धार्मिक दृष्टि के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए भी हैं। उन्हीं में से एक है उदयपुर के तितड़ी के पास बसा हुआ गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर।
1: बिल्कुल, राजस्थान का जो शहर है, झीलों की नगरी उदयपुर, यहाँ पर स्थित है गुप्तेश्वर।

0: सोमेश्वर महादेव मंदिर, एक बेहद पवित्र प्राचीन और अद्वितीय गुफा। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्ता बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति को और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं द्वारा मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर शहर के तीतरडी यानी कि सेक्टर 9 क्षेत्र में एक ऊंची और विशाल पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी की चढ़ाई, यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के भीतर बना है जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 300 से 400 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और हमें आसपास की अरावली की पहाड़ियों के नीचे बसे उदयपुर शहर का बेहद खूबसूरत और विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की ठंडी हवाएं चढ़ाई की थकान को मिटा देती है।
1: गुप्तेश्वर शब्द का अर्थ होता है गुप्त रूप से निवास करने वाले ईश्वर। प्राचीन गुफा ऐसा माना जाता है कि गुफा सदियों पुरानी है और प्राचीन काल में यहाँ साधु संत गुप्त रूप से आकर भगवान शिव की कठिन तपस्या किया करते थे। अमरनाथ जी से तुलना जम्मू कश्मीर के अमरनाथ मंदिर की तरह ही इस मंदिर में भी शिव भक्तों को एक सक्रिय प्राकृतिक गुफा के अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार काफी छोटा है और सकड़ा भी है, जहाँ श्रद्धालुओं को झुककर या बैठकर अंदर जाना जाता है। एक बेहद रोमांचक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।
0: बिल्कुल अनीता, गुफा के गर्भगृह में एक प्राचीन और स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग स्थापित है। गुफा के भीतर का शांत वातावरण, वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर परिसर और गुफा के भीतर प्राचीन काल से ही धार्मिक अनुष्ठान और अखंड ज्योत जलाने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण महीने के पूरे महीने में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। इस दौरान पूरे मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें उदयपुर ही नहीं बल्कि दूर दूर से लाखों श्रद्धालु बाबा गुप्तेश्वर के दर्शन करने आते हैं।
1: वैसे तो देखो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी शिवालय हो, कोई भी जगह हो, जाने का समय हमेशा अच्छा ही होता है। जब भी आपके मन में भाव हो, आप मंदिर जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहाड़ियों के बीच बसा है, हरियालियों के बीच बसा है ना, गुफा के बीच है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा समय मानसून का होता है या फिर होता है सर्दियों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो चढ़ने में जिनको थोड़ी सी कठिनाई हो, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपने आप को बुजुर्ग मानते हैं, जो चल नहीं सकते, ज्यादा चढ़ नहीं सकते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी है और सीढ़ियाँ ज्यादा है।
0: बिल्कुल, धीरे धीरे और आराम से अगर चढ़ेंगे तो वे भी बाबा गुप्तेश्वर मंदिर के दर्शन आराम से कर सकेंगे।
1: जी,
0: और अब अनीता कार्यक्रम में आगे भी बढ़ते हैं और घड़ी की अगर तरफ देखें तो समय हो रहा है हमारे श्रोताओं से विदा लेने का, तो उन्हें छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ। तो दीजिए आज के कार्यक्रम से आपकी रेडियो दोस्त नेहा
1: और अनीता को इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। 10 बजे पुरानी फिल्मों का वो दौर जिसे हम आज भी याद करते हैं, प्रोग्राम होगा वो भूली दास्तां, और 11 बजे वो प्रोग्राम जिसका आपको रहता है इंतजार, तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। तो सुनते रहिए FM रेडियो लेक सिटी।

0: काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहे और ऑनलाइन ठगों से बचे।
1: समझ गया
2: दादी। कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: थैंक्स पप्पू, बचा लिया। ये ले,
3: तेरी समझदारी का फल।
5: आज ये कहता है स्मार्ट बनो, तुम बन जाओ।
6: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी और एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना में निवेश और लेन देन पहले की तुलना में अब काफी आसान हो गया है। डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स धारकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को अधिक उपयोगी बना दिया है। अब खाता धारक बचत खाते में इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय प्रक्रिया करवाने के बाद घर बैठे ही फिक्स्ड डिपॉजिट RD जैसे खाते खोल सकते हैं, विभिन्न बचत योजनाओं में राशि जमा कर सकते हैं और दूसरे खातों में धनराशि ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस की FD, RD, PPF, सुकन्या समृद्धि और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करते हैं। पहले इन कार्यों के लिए उपभोक्ता को बार बार डाकघर जाना पड़ता था, लेकिन अब अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। खासकर नौकरी पेशा लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और दूर दराज क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।

0: आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी

0: ये 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन जन्मे मोहम्मद अजीज की, जिनका जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अजीज उल नबी था। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था और गाने गुनगुनाया करते थे। मोहम्मद रफी के गाने सुनकर वो खुद भी वैसा गाने की कोशिश किया करते थे। दिग्गज गायक मोहम्मद अजीज 80 और 90 के दशक के हिंदी सिनेमा की एक खास आवाज थी। उनका सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। शुरुआत एक छोटे से रेस्टोरेंट से हुई थी और जल्द ही वो बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में शामिल हुए।

गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम बस यहीं तक आपने ट्यून किया एफएम रेडियो लेक सिटी और अब प्रोग्राम वो भूली दास्तां। इस प्रोग्राम में आज हम उन अभिनेताओं को याद करेंगे जिन्होंने कम समय में ही अपनी पहचान बनाई और अपना नाम अमर किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुशील कुमार और सुधीर कुमार की। 1964 की सत्येन बोस की निर्देशित फिल्म दोस्ती जिसके रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी थी। इसके सभी गीत पॉपुलर हुए और आज भी पसंद किए जाते हैं और सुने जाते हैं। ये वो फिल्म थी जिसने उस समय 2 करोड़ की कमाई की थी और इस फिल्म के दोनों अभिनेता सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। लेकिन इस फिल्म के बाद ये दोनों और किसी फिल्म में कभी भी नजर नहीं आए, लेकिन एक फिल्म में काम करने के बाद भी इन्होंने अपनी पहचान आज तक कायम रखी है।

तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वो भूली दास्तां, और इस प्रोग्राम में आज हम याद कर रहे हैं ऐसे कलाकारों को जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया लेकिन अपनी छाप आज तक छोड़ गए हैं। अब हम बात करेंगे 1968 की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सरस्वती चंद्र की, जिसमें मुख्य रूप से नूतन और उनके साथ थे मनीष। और वैसे किसी की जगह कोई नहीं ले सकता। मनीष ने सिर्फ 3 फिल्मों में ही काम किया लेकिन वे पहचाने गए फिल्म सरस्वती चंद्र से। इनका असली नाम था असीम। वैसे कहा जाता है कि पहले यह रोल दिलीप कुमार को मिला, उसके बाद उनको राजेंद्र कुमार को मिला, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरी और ये फिल्म मिली मनीष कुमार को।

चलिए अब बात करते हैं एक और पुराने अभिनेता की, वो है विजय कुमार। विजय कुमार की ये बहुत ही कम फिल्मों में नजर आए, लेकिन इन पर फिल्माया गीत फिल्म कौन अपना कौन पराया का जो आज भी मन को छू लेता है। जो भी श्रोता हमारे पुराने गीत सुनना पसंद करते हैं उनको पता होगा कि विजय कुमार कौन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाने हमने सुने होते हैं, गाने पसंद होते हैं, लेकिन अभिनेता बहुत ही कम फिल्मों में आए होते हैं तो उनको नाम से नहीं पहचानते। चलिए हम बताते हैं, ये है विजय कुमार और फिल्म है कौन अपना कौन पराया।

चलिए बात करते हैं स्वरूप दत्त की। ये एक बंगाली अभिनेता थे लेकिन हिंदी फिल्मों में ये ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन उपहार फिल्म में इन्होंने जो रोल किया वो इनका काफी सराहा गया और इनके ऊपर ये फिल्माया गीत आज भी पसंद किया जाता है।

0: वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल बोल रहो।
5: चंद्रशेखर के बाद अब बात करते हैं देव मुखर्जी की। ये भी हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता हैं। इनका पूरा परिवार ही फिल्मों में है। काजोल के चाचा हैं, अयान मुखर्जी के पिता और जॉय मुखर्जी के भाई हैं देव मुखर्जी।

अब हम बात करेंगे 1960 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले शिव कुमार की, जिनकी मुख्य फिल्में थी हरे कांच की चूड़ियां, महुआ और हवस।

भूली दास्तां एफएम रेडियो लीक सिटी से और आज इस प्रोग्राम में हम उन कलाकारों को उन अभिनेताओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने कम समय में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। अब बात करते हैं किरण कुमार की। इन्होंने भी कुछ ही फिल्मों में काम किया था और कुछ फिल्मों में नकारात्मक भूमिका भी निभाई थी। इनका फिल्माया गया फिल्म चालाक का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
1: और दूसरा
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: अरे मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो।
5: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
4: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
5: सच?
4: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहे और ऑनलाइन ठगों से बचे।
5: समझ गया।

जाएगी हमारी।

चलिए वो भूली दास्तां। इस प्रोग्राम में अब हम याद कर रहे हैं जैमिनी गणेशन को। वैसे तो ये दक्षिणी भारतीय सिनेमा में विशेषकर तमिल फिल्मों में ये दिग्गज अभिनेता थे, लेकिन अपनी रोमांटिक भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन कुछ फिल्में इन्होंने हिंदी में भी की और ये जाने गए फिल्म मिस मैरी के लिए।

चलिए बात करते हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन इन पर फिल्माए गीत सभी को याद होंगे। और वो अभिनेता है जवाहर कौल, जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था। घर से भागकर मुंबई आ गए थे और अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 1945 में वीर कुणाल फिल्म से की थी। उनकी पहली झलक साई बीबी गुलाम में हुई थी, लेकिन वो पहचाने गए देख कबीरा रोया, अदालत और भाभी जैसी फिल्मों के लिए।

भूली दास्तां। इस प्रोग्राम में आज हमने याद किया उन अभिनेताओं को जिन्होंने कम समय में अपनी एक पहचान बनाई। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम रेडियो लेक सिटी वो प्रोग्राम जिसका है आपको इंतजार। तराने हमारे, व्हाट्सएप आपके। इसमें गीत होंगे हमारे और पसंद होगी आपकी जो हम तक पहुंचेगी व्हाट्सएप के जरिए। और कोई भी गीत आपको जब पसंद आता है तो अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही गीत में अपना नाम भेजें, और बहुत ज्यादा नाम भी एक साथ आप ना भेजें। कुछ श्रोता हैं जो बहुत सारे नाम एक साथ भेजते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें प्लीज। हमारे फोन नंबर है 9462697568। और अब बताते हैं फिल्मों के नाम जिनके गीत आप इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो आज की फिल्म है राज, वापस, इज्जत, यादगार, पाकीज़ा, संगम, ठोकर और मन की आंखें। चलिए पहला गीत आप तक पहुंचाते हैं राज फिल्म से।

मोहम्मद रफी का गाया राज फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। अवधेश शर्मा, अशोक शर्मा, रोहित, सनम, प्रजी, शीरा लाल, मुकेश, दिलमणि शर्मा

श्री कृष्णेश्वर माँ ये हैं डुमराव जिला बक्सर बिहार के श्रोता है। और उसके बाद जो संदेश हम तक पहुंचा है वो है रोशनलाल सालवी, राजकुमारी सालवी, ललिता, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिव, विवान, शहद्वीप, पूरा सालवी परिवार, चौकीदार आवास, मीरा गर्ल्स कॉलेज से, और इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और उसके बाद है अशोक, ये है प्रताप नगर उदयपुर से, जिन्हें भी ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है प्रियंका गोस्वामी, प्रद्युमनपुरी गोस्वामी, देवाली, नीमच खेड़ा, देव बगरी से, और पंडित जी सैलियों की बाड़ी के सामने से हैं। उसके बाद हैं सूर्यपाल सिंह और सुकमर जी, प्रेम प्रजापत, दीनू, रंजन भाई और नरेंद्र सहेलियों की बाड़ी से हैं ये भी। और उसके बाद हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू है। उसके बाद है इसी गीत को पसंद किया है हाफिजा मिठाई, नफीसा, फखरुद्दीन, यूसुफ, असगर, सकीना, पटवा, जकैया, गौरैया, बड़ी राम जी की बाड़ी उदयपुर के ये श्रोता हैं। और उसके बाद है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरान नरगिस खातून, जिन्हें भी ये गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है कोटवा नारायण, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुविधा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय है। उसके बाद है कृष्णा पार्क दिवाली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवान है, जिन्हें भी गीत अच्छा लगा है। और मोहम्मद सलीम शाह और रजिया बानो, इनाया टेलर, इक्सा, एकरा, मुस्तफा कॉलोनी, ये है सलूम्बर के श्रोता। उसके बाद है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखे लाल है। और अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है थैंक्स के साथ है, ये नागपुर महाराष्ट्र के हैं, कमल सहानी, मिसेस पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजा मलिक और संदीप मकड़, ये है बेगम इफ्सा, मिसेस सुनीता सहानी, निप्पे सहानी है इनके साथ। और उसके बाद है ग्राम पंचायत बठेड़ा पालन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और पूरा परिवार है, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूरा पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर हैं, ये हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बलो छत्तीसगढ़ से। और उसके बाद हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नरवाकर, निर्मला नरवाकर और विशाल नरवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े और आशीष चमोड़े, धन्यवाद के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश वर्मा है। उसके बाद है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य है। उसके बाद है सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, हसन परवीन और इशराद जीनत नफीसा मलातलाई से हैं, इंतखाब रेहाना, समैया खुशी, नाजिमा, सवीना सेक्टर 12 उदयपुर से, अजाज रजिया, फैजान अमर, अमर नगर ब्लॉक बी उदयपुर के श्रोता है। और उसके बाद है उस्मान बीना, इरफान गुड़िया, निदा अली, दानिशा अली, सज्जनगढ़ उदयपुर के श्रोता है। और देव डोंगरी बावड़िया से हैं लक्ष्मी नारायण जी सालवी, साथ में सुरेश जी मेघवाल। और उसके बाद है प्रिया, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा, ये हैं विश्वविद्यालय मार्ग उदयपुर से। इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गांव फरा से, जिला हिसार से राजकुमार डूटी, प्रमोद कुमार डूटी और सौरभ डूटी, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है गोविंद सिंह, नीलम, सिमी, दिशा, प्रीति, दिवराज, ताफी, नकोड़ा नगर उदयपुर के श्रोता हैं। छोटी बलिया मुंबई करसत से है अहमद भाई फूल वाले, दुखना सफद अजूई, इकबाल, इमरान अहमद फूल वाले, काप सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना और आसमा परी, राबिया, नसरीन बागमान, आशु अहमद फूल वाले, धन्यवाद के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और

पूजा। इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, कैशरू खुराना है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी, रानी माणिकपुरी, उज्जवल दास माणिकपुरी, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है गगनोला दातारंग जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम और रबू खान, सावरीना बेगम, शाहफाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजमा खान और अरहान खान, जिन्हें गीत अच्छा लगा। उसके बाद पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुभि शाह, अश्विन शाह और मंगला बहन शाह, और इनके साथ हैं राजेंद्र जी शाह। अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है वो है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार इनके साथ। सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से है निकिता खतूरिया, कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा, क्यू कुड़ी जोधपुर से है रवीना खतूरिया, सवारा चंदवानी, भरत चंदवानी किया और इस साथ में इनके परिवार वाले हैं। इसी गीत को पसंद किया बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणि बघेल, साहिल भारती बघेल, ये हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के श्रोता। और उसके बाद है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टू, रोजी डिकेस्टू, पर्ल डिकेस्टू और विलिस डिकेस्टू, जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, नमस्ते के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और गुड मॉर्निंग के साथ अगला संदेश है रामचंद्र टेलर, लीला देवी टेलर, कल्पेश पवार, पिंकी मनस्वी, चैतन्य और कार्ती के प्रभात नगर हिरण मगरी सेक्टर 5 के श्रोता है। और उसके बाद है ये है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अरस वारसी, यशव अब्बासी, सिकंदरा राव से, ये है मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, शुक्रिया के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। संदेश अभी हमारे पास और बहुत सारे हैं, हम जो नाम बच गए हैं वो आगे गीत के साथ आपको बताएंगे। लेकिन श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट है कि जब जो गीत बज रहा है उसी के लिए अपने नाम भेजें, एडवांस में ना भेजें। चलिए अगला गीत है फिल्म वापस से।

राज फिल्म का गीत हमने पहले सुनाया था और उसके बाद सुनवाया है वापस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी। और मिले जुले नाम हम आपको बहुत बताते हैं, अशोक विहार से संजू मेहता है जिन्होंने गीत को पसंद किया। और उसके बाद है चेतक सर्कल से मुकेश जिंगर, रेणु जिंगर, अजय जिंगर, प्रिंस जिंगर, कुलदीप, सचिन कॉम्प्लेक्स, आजाद नगर के श्रोता है। और उसके बाद है जिला झारखंड बड़ा बॉम्बे सुपाई साई गाँव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली और कुमारी और देवेन जी जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गौरैया जालंधर से हैं। और बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष, राजा चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान है। बाबूलाल जी दिनेश टांक, मुकेश टांक और पुष्कर टांक सूरजपुर रेगर कॉलोनी से हैं। दिनेश जिंगर, मोहित जिंगर, इंदु जिंगर ये हैं भूत महल के श्रोता हैं। मीरा नगर से मनमोहर सिकलीगर, सरोज सिकलीगर, गणेश घाटी से हैं हेमेंद्र विजेंद्र सिकलीगर। और उसके बाद है धन्यवाद के साथ जिन्हें वापस फिल्म का गीत अच्छा लगा है और ये श्रोता है जिला नांदेड़ इतला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी सवाल धन्यवाद के साथ। अगला संदेश है ये है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, गुड मॉर्निंग के साथ। अगला संदेश है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, गुगलानी, किरण ठाकुर और जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और जग्गी दुआजी, राम रामसाजी, राम राम साजी के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। और उसके बाद है ताज मुल अनवर राज, राम सुरेश आर्या ये है, राम निवास अशोक जी, कृष्णा सूरजपुर उदयपुर से एक तेरा साथ ये गीत इनको अच्छा लगा है। और उसके बाद हरिशंकर शर्मा, जी शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सारणी कोलकाता पश्चिम वेस्ट बंगाल के श्रोता है। और ये है राज रहमान कॉलोनी उदयपुर से रुखसाना बानो, मोहम्मद इदरिश, मुस्तफा रजा और वापस फिल्म के गीत को पसंद किया है रहमान कॉलोनी उदयपुर से। इन्होंने दो बार कर दिया तो एक बार ही करें प्लीज, दूसरी बार संदेश न करें। और उसके बाद है रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है ये है लकी दास रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, निकुंज रंज और उसके बाद है नया गांव पाली से जगदीश राज रंगास्वामी, साधना, भास्कर, चित्रांशी और पूरा भीमर परिवार जिन्हें ये गीत अच्छा लगा है। उसके बाद है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, आपकी कुशलता के साथ धन्यवाद के साथ इन्होंने संदेश भेजा है, स्टेशन जमशेदपुर से है ये। जय जिनेन्द्र के साथ 150 एन रोड भोपालपुरा से राजेश भंडारी, नम्रता भंडारी, एडवोकेट लक्ष्यराज भंडारी और पृथ्वी राज भंडारी वापस फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और उसके बाद हैं सुमन देवी, अजीत सिंह, करण सिंह और ये हैं गोवर्धन सिंह, रामपुरा उदयपुर से वापस फिल्म के गीत के लिए इन्होंने संदेश भेजा है। और उसके बाद हैं ये हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोन जोशी। अगला संदेश है ये है जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश की श्रोता मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहित, ऋतिक।

बलबीर सिंह धन्यवाद के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार वापस फिल्म का गीत इनको अच्छा लगा है। और राजकुमार माथुर, स्मिता माथुर, निलय माथुर, अक्षिता माथुर, आलंद माथुर, ये बोहरा गणेश जी उदयपुर के श्रोता है। गांव जाकोड़ा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक, जिन्हें अच्छा लगा है गीत। और उसके बाद है ये कोल सिटी बरका खाना से अफजल दास, शाहीन सुल्तान, सोनू तस्नीम और निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक भी है इनके साथ। नमस्कार के साथ ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है गांव खरकरा चौबीसा से, गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीता कांगड़ा, आंशिका बोट और तमन्ना बोट, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर धन्यवाद के साथ है। ये डाबली रोड अकोला के श्रोता है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया हैं। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, वीना कामड़े, मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, बोरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बीर टेलर और हसीना हैं। और उसके बाद खमागणी अनीता मैडम के साथ लिखा है, गाना अच्छा चल रहा है। और उदयपुर रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, ललित जी, किरण, अजय, भावना, विनायक जी, हेमलता, यशस्वी, सिद्धि, निष्ठा, प्रतिष्ठा और ये हैं। काष्ठकला मार्ग से अमृतलाल जी, रेणु और रविशंकर जी, हनुमान जी मंदिर से अशोक जी, सीता देवी, सूरज, तशु, हेनू और लाल मगरी सेक्टर 7 से हैं शांता देवी, मनोज, सुनील कुमावत धन्यवाद के साथ। और उसके बाद है रास फिल्म के लिए हमारे पास संदेश पहुंचा है खांजीपीर उदयपुर से, जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निदा, इरम कलीम, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, प्रतापनगर से नरेश दवे, रंजना दवे और अंशुल दवे, वापस फिल्म के लिए है कुतुबपुरा उदयपुर से अशरफ खान, रईसा खातून, मंजू निम्मी, असीफिट रोड से नजीब खान, सबिया खानम, शिवा और शैला, अनिता जी आज गीतों का चयन अच्छा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश कनौजिया, ऋषि कनौजिया, मलय कनौजिया अपोजिट आयुर्वेदिक कॉलेज से है। और उसके बाद है ये है जिला अंबावगढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहाना है, वजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनारी विश्वकर्मा, सोनम और आशीष कर्मा और धन्यवाद के साथ इनका संदेश हम तक पहुंचा है। और उसके बाद है ये है जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती मंजू, रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, ये हैं हिंगड़ी आलोर जिला रतलाम एमपी के श्रोता। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म इज्जत से।

0: और दीपक और अनुषी श्याम कुंवर है और उस फिल्म का नाम है इज्जत। इस गीत के पसंद करने वाले श्रोताएं उदयपुर वारियों की घाटी से, सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी और नाहर सिंह वारी है। धर्मचंद्र, रेखा, घनश्याम, ज्योति, नविशा, योगेश जी, आकाशवाणी, वैशाली सौरभ और पूरा गोयल खत्री परिवार मोहल्ला राजनगर राजसमंद के ये श्रोता है। और उसके बाद है कालकामाता रोड से है धंटी कुमार चित्तौड़ा, नवीन कुमार चित्तौड़ा, मनीष कुमार चित्तौड़ा, डॉक्टर इकबाल शका साहब जी प्रोफेसर। और उसके बाद है शैलेंद्र पालीवाल, कालू जी, हितेश जी मेघवाल और आसपास के सभी लोग हैं जो प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। नरेंद्र नारंग, राजेंद्र नागर नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग है, ये है बटिंडा रोड मंडी डब वाली से। उसके बाद है बलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेम लता डिंपल देवांगन। और इज्जत फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ये, धन्यवाद के साथ हैं, रेडियो श्रोता संघ की सखियां हैं ये। उसके बाद है जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परमणि महाराष्ट्र से, रूपेश संगई, महेश और प्रज्ञेश, प्रतेश और पूरा संगई परिवार। और प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है और गीत भी इनको अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया, सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा, गांधीनगर गुजरात के ये श्रोता है। और अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर, हिरन मगरी सेक्टर 5 के श्रोता प्रभा और अशोक आनंद, मीनू नैनानी, ये भी इन्होंने दोबारा मैसेज कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ चलिए एक संदेश और पढ़ लेते हैं, ये है पिलादर रोड से नाथूलाल देवड़ा और गोपाल देवड़ा। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म यादगार से।
1: उस पर

0: 14 से ललित सिंह चौहान का करवा आयर से उमेश दाईमा हेमेंद्र दाईमा दक्षिणी आयर कलाल वाटी इंदर सिंह राजावत सज्जनगढ़ रोड से धीरज सिंह ठोकर चौराहा से और तनिक चौहान सूरजपुर कालका माता उदयपुर के श्रोता मुकेश पटालिया मामाजी लाला राम जाटोलिया दीप टेलर सेंट्रल एरिया के श्रोता जिन्होंने इस गीत को पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म पाकीज़ा से एक अंतराल के बाद।
1: अरे मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहे और ऑनलाइन ठगों से बचे।
2: समझ गया।
3: कौन सा ब्रांड है?
4: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक और क्लिक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, सिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
6: आज ये कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
0: फिल्म पाकीज़ा और आवाज लता मंगेशकर की।

संगम फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी मोहम्मद रफी की आवाज थी और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता है सज्जन नगर उदयपुर से नुसरत जहां मोहम्मद जाकिर मोहम्मद अरशद मोहम्मद इरशद सोनू आफरीन मोना और राधा है और जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी कलश मार्ग से लाला सोनी और अशोक तोलानी है लाल मगरी सेक्टर 7 से शांता देवी मनु सुनील कुमावत और सदाबहार सारे ही गाने इन्हें अच्छे लगे हैं तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिजा फिल्म के गीत को पसंद करा है हेमा कनौजिया लता कनौजिया और आयुर्वेद चौराहा कॉलेज के ये श्रोता है। ओके अगला संदेश है राम राम आकाशवाणी उदयपुर से मैसेज कर रहा हूँ और उसके बाद ये लिखने वाले हैं छतरपुर बुंदेलखंड से बजा से बजरिया रोड छतरपुर के बहादुर चक्रवर्ती नंद किशोर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती और हमारे बड़े भैया हरिराम दशरथ श्रीमती शीला भाभी जसोदा भाभी गोलू नीरज और समस्त बुंदेलखंड निवासी हैं और बहुत इन्होंने लिखा है अनीता जी गाने बहुत अच्छे बजे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिखने वाले हैं उदयपुर वारियों की घाटी से हरीश रावत मीना रावत एस एन रावत भोपाल वाड़ी से रवि भाई और सत्तू भाई दिलीप खत्री जी ने गीत अच्छा लगा तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से हैं रवि कुमार राहुल रणजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत राहुल और गुरबख्श सिंह राहुल धन्यवाद के साथ और उसके बाद है ये हैं अशोक इन्हें भी आज का प्रोग्राम और गाने अच्छे लगे तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मचंद्र रेखा घनश्याम ज्योति नवीशा आकाश वैशाली सौरभ और पूरा गोयल परिवार और खत्री परिवार राजसमंद के ये श्रोता हैं। चंद्रशेखर भावसार संगीता भावसार कपिल भावसार दामिनी भावसार लविशा भावसार ये मोहाली चौटा उदयपुर से और उसके बाद है रहमान कॉलोनी उदयपुर से बिस्मिल्ला बानो फिरदोस बानो रीसा बानो और रुखसाना बानो है मुकेश बडारिया रेगर कॉलोनी मावली के श्रोता और उसके बाद है संगम फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता बोरा गणेशी से चंद्र प्रकाश अग्रवाल चंदा अग्रवाल हर्ष और भरत अग्रवाल मलातलाई उदयपुर से फैयाज हुसैन रसिया फरीदा बानो और मोहम्मद सैफ और रुबीना जी ने गीत अच्छा लगा है और उसके बाद है ये है अनिल कुमार गोड़ के वैशाली अनिल प्राजक्ता गोड़ के वैश्वी गोकड़े गायत्री गोकड़े और यज्ञेश गोकड़े ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के श्रोता। चलिए प्रोग्राम का अगला गीत फिल्म ठोकर से

मोहम्मद रफी का गाया फिल्म ठोकर का ये गीत पसंद करने वाले श्रोता हैं दुष्यंत और जिज्ञासा 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता और शक्ति नगर उदयपुर से संतोष खतुड़िया, काम्या खतुड़िया, विकास खतुड़िया, भानु खतुड़िया और हितांशी खतुड़िया जिन्हें गीत अच्छा लगा है। और उसके बाद है बिंडर जिला उदयपुर से सत्यनारायण मंडोवरा, रामचंद्र टेलर, शांति लाल चौबीसा और उनका पूरा मित्रगण परिवार भी है और इसी गीत को पसंद किया है। विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत व्यास, बुनु व्यास, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड की श्रोता। चलिए प्रोग्राम का आखिरी गीत मन की आंखें फिल्म से।

टेकरी लिंक रोड से मिस्टर एंड मिसेस की के और उनकी प्यारी सी बिटिया, और उन्होंने थैंक यू के साथ लिखा और पाकीज़ा फिल्म का उन्हें ये गीत अच्छा लगा है।

पोखर फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं प्रेस कॉलोनी से रियासत अली जाहिदा बानू, इमरान अली निगार परवीन और इरफान अली जाकिरा बानू।

बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूणत, धन्यवाद के साथ।

FM 96,8 MHz पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र FM रेडियो लेक सिटी समय दोपहर के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे।

0: प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाईची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुनीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल थी और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनिक ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना वर्मा मलिक के बोल उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना सचिन देव बर्मन का संगीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, सौ सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम, ये कहता है दिल थाम लोगर रंग साथ अभी खिल जाएंगे, वन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे, रजनी गंधा संग खिलता मन बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पड़ जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और गलियां नजर आई, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की, तीन दिन से हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में तीन दिन से तीन तीन फूल खिल रहे हैं, आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन के लिए भी उसमें तीन कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद है, एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चले तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा। इसलिए कुछ गीतों को हमने छाट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम। लेकिन एक सवाल और है, आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं। आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है। उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के, तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी, और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियां थी, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से, और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो जरूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र

खूबसूरती का और तमाम उन चीजों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम। और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है, तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं। पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहाँ सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है, तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारिख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए, लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलगंदी में जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है, तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, 100 साल पहले तो नहीं 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो हवा के संग प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है, भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की, हे विविध भारती तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं, ये तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जवाब मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान अनजाना रिश्ते की तरफ अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है, न बांधने की चाहत

छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफी जी सुमन जी शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोक कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982

0: ने पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गतराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है। सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहाँ हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारे और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं, नहीं।

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि

दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाली क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफी साहब के गीत के इस आवाज को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें जरूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए। फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कहीं देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए या कि हमें ये ड्रेस जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो सजावट हो प्रकृति हो विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली हैं। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है। सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देकर अकेले में गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमयी हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल तार में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं। आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाए, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का

मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे। और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का। लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते। वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है। इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिक वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है। ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी खसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है। सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है। बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह। ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

रात होगी लेकिन यादों के ये चराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज पहुंचाने का जरिया है, मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं क्योंकि फ्लावर वास में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ सच में मुरझा जाते हैं लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजू को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत

आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नजर में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

0: बिगड़ी है।
1: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में

0: सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाई जी, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न बनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बारताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गाँव में विकसित भारत जयराम

जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।

0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मधपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया।

0: रहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल है और नौशाद की धुन।

असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक राज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन मनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है, इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: जिन जगहों पर

0: अभी बारिश नहीं आई है, वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है, जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं
1: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं और आनंद का जो
0: क्षण
1: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है। सुना ली
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
0: देखिए, जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे है ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना। और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है, कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
1: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
0: और आप क्या करना चाहिए,
1: गीत सुनना चाहिए,
0: तो सुनते हैं गीत।
2: फूलों का शबाब उसमें फिर

0: तो दीपा बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपने पारंपरिक और उत्कृष्ट कथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कथा, लेप कथा, सुजनी कथा, बेटन कथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो काथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस काथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा

0: काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती है जी। और दगदीरा बेगम नक्शी काथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था। और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक काथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना,
1: बिल्कुल मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की काथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन काथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जी सम्मानित कर दिया जी।
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
0: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगे। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
0: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति ने तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
1: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
0: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
1: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई ये भी संरक्षित है आज भी और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
0: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
1: गीत सुनेंगे,
0: तो एक गाना सुनते हैं।
1: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।

0: la perseto parmano.
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा, हम कई बार ऐसे
2: हमारा चेहरा वैसा ही हो जाए,
1: वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं,
2: हाँ।
1: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं,
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लार दुलार किया,
1: हाँ।
2: अब वो ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना।

0: बाद में वो जिद करता ही ना। वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
0: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत सारी।
0: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है, हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
0: जी,
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है और फिर वो बातें पता नहीं कहाँ तक चली जाती है।
0: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
1: बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही कहा
0: कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने या अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपने या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि ये बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
0: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है। यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुरानी एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवां चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है जो अब दुनिया में नहीं, उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुरानी एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक, चलिए।

ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी

0: मेरी तरह छोटा था
1: कितना मासूमियत भरा सवाल है।
2: बिल्कुल, और इसी तरह से जब हम अपनी यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
1: जी,
2: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, एक खुशी की जो लहर अंदर चल पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल की भाई, शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है
1: जी।
2: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
2: मदद मिले,
0: सहयोग मिले
2: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
2: हाँ,
0: इन पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
2: ऐसा
0: ही काम करते थे।
2: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करे उनके साथ शादी हो जाया करती थी, उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
2: बिल्कुल, वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
2: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के

0: लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान लेगी, किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते

0: तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिक हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते, पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते, अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
1: जी अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी के भी हाल ही में शादी हुई और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सबने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहाँ वो ससुराल में गई है तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए, ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
0: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता।
1: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर सकती है और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
0: पूरे परिवार को होता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा,
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा
1: होता तो है,
0: है ना? हाँ। और नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद,
0: हैप्पी बर्थडे बॉय,
2: मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।

0: जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know RBI कहता है
1: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
3: ऐसा अक्सर होता ही जाता
2: है ना।
3: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
2: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क।

0: है तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं। वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी

0: थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना मुस्कुराना खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें। जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है, दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को। कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं। वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए। और उससे ज्यादा जरूरी, सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो। कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से पहले।
1: बिल्कुल।
0: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती है, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले।
1: चलिए।

0: है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए, तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक की

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूँ जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारतीय कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, अब इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: चलो, अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती।
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से एक गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लक बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्ना लाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्ना लाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्ना लाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ आपका, तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं, पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खान और अकबर खान, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो।
0: खानदान से लगे? अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधि।

0: है 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है
0: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह,

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजी नगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पासीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसा हल रहा है कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम तो गाना ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, जिसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल साहब
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना।

0: साथ फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और के एल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं, ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
1: जी।
0: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का स्वयं अभिनेत्री
1: जरूर
0: है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
1: मोरे सजन
0: आजाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आज बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन में दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे शायद जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश, संगीतकार दीनानाथ मधुक।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि बाजी की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हो सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी। और बताइए विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर

0: एक नया प्रोग्राम होता है सर, कभी सैटेलाइट के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने क्या होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
1: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मन चाहे गीत।
1: तो आपने खत भेजा कि नहीं मन चाहे गीत के लिए?
0: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
1: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
0: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए, मेहताब उधर मेहताब।
1: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और

0: बात की प्रोग्राम आके हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन क्या है कि भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम जगत बात के सुनते रहते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
0: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं। और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब की। और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
1: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
0: साल में एक बार आते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज ये सेब जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
0: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है महाराष्ट्र और बम्बई में।
1: अच्छा अच्छा, तो हम जो सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
0: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसे होती है, क्योंकि इसकी सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं हमारे हिमाचल की जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
1: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
0: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती हैं, है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, टक्कर सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करो शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन, आपका नाम बताइए।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, बिल्कुल सुकून देकर चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह
1: जी
0: से आप
1: जी
0: लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गाँव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गाँव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है, मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यही अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा सपना था घर की में कभी भारतीय में मेरा कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया।
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत ही सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा गर्भवती फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS से अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी, बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है, श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: गर्मियों के 40 दिन बहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान, ये 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बहरात में चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
0: अच्छा, तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार
1: बहरात के समय? जी जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बहरात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बहरात हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बहरात के समय फैमिली के साथ।
0: आपकी नजर से वो गर्मियां हैं मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है। जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है, आपके यहाँ कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना और दूसरा जो है हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
0: जी जी जी,
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं, गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
0: जी जी,
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है।

0: हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं।
1: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मोहम्मद सर इतना अपार प्रेम हो चुका है, सर इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जी कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं।
1: सर और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा, और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस

0: गीत की फरमाइश लिख रखी है आपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है। मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240002462। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रीकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, FM रेडियो लेक सिटी। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। युवाणी कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: साहिल, कभी सोचा है कि हम सबकी जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती?
1: समय?
0: नहीं, वो है बदलाव। क्योंकि अगर जरा पीछे मुड़ के देखें तो पिछले 10-15 सालों में हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। पहले खेतों में सिर्फ हल और बैलगाड़ी दिखाई देते थे, आज वहीं ड्रोन उड़ रहे हैं। पहले दुकानों पर जाकर सामान खरीदना पड़ता था, आज मोबाइल पर 2 मिनट में ऑर्डर हो जाता है। पहले जानकारी ढूंढने में घंटों लगते थे और आज कुछ ही सेकंड्स में जवाब हमारे सामने होता है।
1: बिल्कुल सही कहा चिन्मय, लेकिन मजेदार बात यह है कि बदलाव सिर्फ मशीनों में नहीं आया, लोगों की सोच में भी आया है। आज का युवा नौकरी ढूंढने के साथ साथ खुद को कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। कलाकार अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, खिलाड़ी हर रिकॉर्ड को चुनौती दे रहे हैं और किसान अब नई तकनीकों को अपनाने से पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर दौर की सबसे बड़ी पहचान उसकी नई सोच होती है, क्योंकि जो समय के साथ बदलना सीख जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और है, बदलाव का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना बिल्कुल नहीं होता।
1: बिल्कुल चिन्मय, असली बदलाव वही होता है जहाँ परंपरा भी साथ चले और प्रगति भी, जहाँ नई तकनीक हो लेकिन प्रकृति का सम्मान भी हो, जहाँ आधुनिक सोच हो लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों की खुशबू भी बनी रहे।
0: और शायद यही वजह है कि आज का सफर भी इतना ही दिलचस्प होने वाला है। कहीं बात होगी आधुनिक खेती की, कहीं ऐसे युवा टेक्नोक्रेट की जिसने दुनिया भर के कारोबार का तरीका बदल दिया। कहीं मिलेंगे संगीत और अभिनय की दुनिया के शानदार नामों से, तो कहीं इतिहास के ऐसे पन्ने पलटेंगे जो हमें प्रकृति और इंसानियत दोनों की कीमत समझाते हैं।
1: यानी आज का युवा ही सिर्फ अलग अलग विषयों का संग्रह नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर पड़ाव में हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर मिलेगा और कहीं प्रेरणा मिलेगी, कहीं जानकारी और कई ऐसी कहानियां जो शायद कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आपके साथ हैं।
0: तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपने आप को थोड़ा सा आराम दीजिए, क्योंकि बातचीत होगी ऐसी जिसमें खेत भी होंगे, तकनीक भी होगा, इतिहास भी होगा, संगीत भी होगा और खेलों की दुनिया की चमक भी। तो दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय और मेरे साथ है साहिल और आप सुन रहे हैं युववाणी।

0: साथियों, आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं इंडिया एट 2047, 2047 का ये भविष्य हम जो है उसमें देखने जा रहे हैं और मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात होने वाली है। साल 2047 तक हमारा भारत जो एक डेवलप्ड नेशन बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है।
1: बिल्कुल, आज फार्मिंग सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स तक सीमित नहीं है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में AI, ड्रोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इरिगेशन और सॉइल टेस्टिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे फार्मर्स कम लागत में बेहतर प्रोडक्शन ले पा रहे हैं।
0: आज फार्मर्स मोबाइल एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइसेस और गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन भी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इसी सही टाइम पर सही डिसीजन लेने से पहले से जो है वो आसान हो चुका है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, प्रिसाइज फार्मिंग और मिलेट कल्टीवेशन पर भी खास फोकस किया जा रहा है। इससे फूड क्वालिटी भी और बेहतर हो रही है और पानी की बचत हो रही है और तो और एनवायरमेंट को भी काफी फायदा मिल रहा है।
0: एग्री स्टार्टअप्स भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। स्टार्टअप मॉडर्न मशीन, कोल्ड स्टोरेज, ऑनलाइन मार्केटिंग और स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस के जरिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर हम बात करें भारत सरकार की तो भारत सरकार के द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, PM किसान और PM फसल बीमा योजना और ई नाम जैसे इनिशिएटिव्स भी एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइवर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
0: और चंद में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग पर इसी तरह फोकस रहा तो इंडिया एट 2047 तक भारत दुनिया का लीडिंग एग्रीकल्चर नेशंस में अपनी पोजीशन और मजबूत कर सकता है।
1: तो साथियों, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का नाम नहीं है बल्कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाने, फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने और आने वाली जनरेशंस के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

0: तकनीक की दुनिया में कुछ ऐसे युवा नाम हैं जिन्होंने अपने नवचार और दूरदर्शिता से वैश्विक पहचान बनाई है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक युवा टेक्नोक्रेट फैबियन पिंकर्स, जिन्होंने बिजनेस सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक नई सोच को जन्म दिया।
1: फैबियन पिंकर्स बेल्जियम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वर्ष 2005 में उन्होंने उडू की स्थापना की। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआत टाइनी ईआरपी के नाम से हुई, जो बाद में ओपन ईआरपी और फिर अंत में उडू के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया।
0: आज उडू दुनिया के 170 से अधिक देशों में लाखों उपयोगकर्ताओं और हजारों कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अकाउंटिंग, सेल्स, इन्वेंटरी, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह एक भरोसेमंद और लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका है।
1: फैबियन की सोच हमेशा से ही अलग रही है। उनका मानना था कि आधुनिक और प्रभावी बिजनेस सॉफ्टवेयर केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं होने चाहिए, छोटे और मध्यम बिजनेस को भी ऐसी तकनीक सुलभ और किफायती रूप में मिलनी चाहिए। यही विचार उडू की सफलता की सबसे बड़ी वजह बना।
0: उनकी इसी दृष्टि और नेतृत्व से उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सहारा गया। वर्ष 2019 में उन्हें ईवा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बेल्जियम के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद 2020 में उन्हें मैनेजर ऑफ द ईयर का सम्मान भी प्राप्त हुआ। उनके नेतृत्व में उडू ने तेजी से विस्तार किया और आज यह यूरोप की सबसे अग्रणीय सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिनी जाती है।
1: साथियों, फैबियन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं है बल्कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में मजबूत समर्थक भी है। उनका मानना है कि बेहतर तकनीक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि व्यवसाय अधिक कुशल, पारदर्शी और आधुनिक बन सके।
0: आज दुनिया भर के लाखों उद्यमी और स्टार्टअप उनकी सोच से प्रेरणा लेते हैं। फैबियन की सफलता यह साबित करती है कि यदि विचार नया हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर हो, तो एक युवा टेक्नोक्रेट भी वैश्विक स्तर पर बदलाव ला सकता है।
1: निश्चित रूप से फैबियन पिंकर्स की यात्रा नवाचार, नेतृत्व और तकनीक के माध्यम से समाज और उद्योग दोनों के लिए नई दिशा देने का प्रेरक मिलती है।

0: तकनीक और नवाचार की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं उस मंच की ओर जहां प्रतिभा, मेहनत और समर्पण किसी भी व्यक्ति को एक अलग पहचान दिलाता है।
1: जी हाँ, अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट शख्सियत का, जिसमें आज हम बात करेंगे दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग छाप छोड़ी है।
0: आज की पहली शख्सियत है भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर की।
1: जानी मास्टर, जिनका वास्तविक नाम शेख जानी बाशा है, उनका जन्म 2 जुलाई 1982 को आंध्र प्रदेश के नेलौर में हुआ। बचपन से ही उन्हें नृत्य में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की और बाद में कई प्रसिद्ध कोरियोग्राफर के साथ सहायक रूप में काम करते हुए अपने हुनर को निखारा।
0: वर्ष 2009 में तेलुगु फिल्म द्रोणा से उन्हें स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में पहला बड़ा अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी ऊर्जा से भरपूर, आधुनिक और दर्शकों को आकर्षित करने वाली कोरियोग्राफी के कारण वे दक्षिण भारतीय सिनेमा के साथ साथ हिंदी फिल्म के उद्योग के जो है बहुत ही लोकप्रिय कोरियोग्राफर बन गए।
1: जानी मास्टर ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के अनेक सुपरहिट गीतों में कोरियोग्राफी की है। अभिनेता अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, थलपति विजय, यश, सलमान खान और रणवीर सिंह जैसे कई बड़े सितारों के साथ उनका काम काफी सराहा गया है। उनके डांस स्टेप्स और अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और युवा वर्ग के बीच बेहद लोकप्रिय भी रहते हैं।
0: उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है वर्ष 2024 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उन्हें फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लोकप्रिय गीत मेघम करुणाकथा के लिए उत्कृष्ट कोरियोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की एक बड़ी पहचान माना जाता है।
1: राष्ट्रीय सम्मान के अलावा जानी मास्टर को सीमा यानी कि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स और अन्य प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह में भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कोरियोग्राफी की विशेषता यह है कि पारंपरिक और आधुनिक नृत्य शैलियों को ऐसा सुंदर समन्वय करते हैं जो हर आयु वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करता है।
0: कोरियोग्राफर होने के साथ साथ जानी मास्टर कई डांस रियलिटी शो में जज और मेंटर की भूमिका निभा चुके हैं। वे युवा कलाकारों को मंच देने और नई प्रतिभा

0: को प्रोत्साहित करने के लिए भी जाने जाते हैं।
1: बैकग्राउंड डांसर से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर बनने तक का जानी मास्टर का सफर इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता भी नई ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है।
0: अब बात करते हैं आज की दूसरी शख्सियत की। अपनी सादगी, गंभीर अभिनय और हर किरदार में जान डालने के लिए अद्भुत क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता जो है पवन मल्होत्रा की। भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से वो एक है जिन्होंने बिना किसी स्टार छवि के केवल अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है।
1: साथियों, पवन मल्होत्रा का जन्म 2 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन से की और जल्द ही अपनी प्रभावशाली अभिनय शैली के कारण फिल्म जगत में भी पहचान बना ली। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से उन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
0: अगर उनके यादगार अभिनय की बात करें तो ब्लैक फ्राइडे, भाग मिल्खा भाग, हवा हवाई, मंटो, शेर दिल, पीली भात सागा, ग्रहण और तब्बड़ जैसी फिल्में और वेब सीरीज में उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। दर्शकों और समीक्षाओं दोनों की खूब सराहना वो प्राप्त कर चुके हैं और हर भूमिका में उनका सहज और स्वाभाविक अभिनय उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है।
1: साथियों, पवन मल्होत्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह किसी भी किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। चाहे संवेदनशील पिता की भूमिका हो, एक कठोर पुलिस अधिकारी का चरित्र हो या फिर समाज के किसी साधारण व्यक्ति का जीवन, वे हर भूमिका पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ निभाते हैं।
0: उनकी प्रतिभा को कई प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मान भी मिला है। वर्ष 2022 में उन्हें फिल्म शेर दिल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सहारा गया है। समीक्षक उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सशक्त चरित्र अभिनेताओं में भी गिनते हैं।
1: फिल्मों के अलावा पवन मल्होत्रा ने टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी अभिनय क्षमता का शानदार परिचय दिया है। हर एक नए माध्यम उन्होंने ये साबित किया है कि अच्छा अभिनय समय और मंच का मोहताज नहीं होता।
0: पवन मल्होत्रा की ये यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल लोकप्रियता से नहीं बल्कि अपने काम के प्रति समर्पण, निरंतर सीखने की इच्छा और उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज के कुछ युवा कलाकारों के लिए ये प्रेरणा सूत्र बन चुके हैं।
1: वास्तव में पवन मल्होत्रा भारतीय सिनेमा की उन अनमोल हस्तियों में से है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से हर किरदार को यादगार बना दिया और यह साबित किया कि ऐसे सशक्त अभिनेता अपनी कला से ही दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ते हैं।

0: कला और सिनेमा की इन प्रेरक शख्सियतों से आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इतिहास के उन महत्वपूर्ण पड़ावों की ओर जिन्होंने भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों को नई दिशा दी।
1: जी हाँ, आज के दिन इतिहास में दर्ज एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है कि शिमला एग्रीमेंट, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला को एक नई दिशा देने का प्रयास किया।
0: आइए जानते हैं शिमला समझौते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और इसका ऐतिहासिक महत्व। दोस्तों, 2 जुलाई 1972 भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख। इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
1: इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति बाद में प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षर किए। कई दिनों तक चली वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने यह सहमति बनाई कि भविष्य में अपने मतभेदों को युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे।
0: शिमला समझौते का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि 1971 के युद्ध विराम के बाद बनी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दिया गया। दोनों देशों ने LOC का सम्मान करने और एक तरफा तरीके से उसकी स्थिति में कोई बदलाव न करने का संकल्प भी व्यक्त किया।
1: इसके अलावा दोनों देशों ने अपनी संबंधी को सामान्य बनाने, राजनीतिक संपर्क बनाने, संचार और यात्रा सुविधाओं को बेहतर करने तथा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। समझौते का उद्देश्य दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और विश्वास का वातावरण तैयार करना था।
0: इतिहास के पन्नों में दर्ज शिमला समझौता हमें यह संदेश देता है कि संवाद, कूटनीति और आपसी विश्वास किसी भी लंबे समय तक चलने वाले विवाद के समाधान का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
1: और इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 2 जुलाई को शिमला समझौते की वर्षगांठ के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल साहिल, इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देते बल्कि प्रकृति और समाज और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं। और आज जब 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है और इसी सप्ताह में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रेरणादायक अध्याय की जो पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।
1: बिल्कुल साथियों, हम बात कर रहे हैं बिश्नोई बलिदान की, एक ऐसी घटना जिसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति की रक्षा के लिए मानव अपने प्राणों को भी त्याग कर सकता है।
0: वर्ष 1730 में वर्तमान राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटी। उस समय जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह के आदेश पर राजकीय निर्माण कार्य के लिए लकड़ी जुटाने हेतु सैनिक खेजड़ी में पेड़ों को काटने पहुंचे,
1: लेकिन बिश्नोई समाज

0: के लिए खिचड़ी का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, पर्यावरण और आस्था का प्रतीक था। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जोंबोजी ने लगभग 500 वर्ष पहले अपने 29 सिद्धांतों में प्रकृति, वन्य जीवों और हरित वृक्षों की रक्षा का संदेश दिया था। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए गांव की महिला अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया।
1: जब सैनिकों ने पेड़ काटने का प्रयास किया तो अमृता देवी ने खेजड़ी के वृक्ष को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात यदि पेड़ बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो यह सौदा भी सस्ता है।
0: अमृता देवी के बाद उनकी तीनों बेटियां आंसू, रतनी और भागू भी पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आई। देखते ही देखते आसपास के गांवों के लोग भी पहुंचने लगे। अंततः 363 बिश्नोई स्त्री पुरुषों ने एक एक पेड़ से लिपटकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ों को बचाने में अपना संकल्प नहीं छोड़ा।
1: जब यह समाचार महाराजा अभय सिंह तक पहुंचा तो वे इस बलिदान से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तत्कालीन पेड़ों की कटाई रुकवाई और बिश्नोई क्षेत्रों में हरे भरे जो पेड़ थे और उनके जो वन्य जीव थे उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
0: खेजड़ी का यह बलिदान विश्व के पर्यावरण संरक्षण इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है। माना जाता है कि बाद के वर्षों में शुरू हुए चिपको आंदोलन सहित अनेक पर्यावरण आंदोलनों को भी इस घटना से प्रेरणा मिली है।
1: बिल्कुल, आज भी हर वर्ष राजस्थान के खेजड़ली में इन 363 बलिदानियों की स्मृति में मेला और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनका त्याग हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति का संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
0: वाकई में बिश्नोई समाज का यह अद्वितीय बलिदान मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध, पर्यावरण और के प्रति समर्पण और जीवन मूल्यों के लिए भी अमर मिसाल है।

0: आज के हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं अनूप कुमार दत्ता की, जो कि भारत के जाने माने ऑथर और जर्नलिस्ट है। खास तौर पर बच्चों और युवाओं के लिए लिखी गई उनकी जो बुक्स है वो काफी पॉपुलर रही है।
1: बिल्कुल, अनूप कुमार दत्ता का जन्म 2 जुलाई 1946 को असम में हुआ। उन्होंने जर्नलिज्म और राइटिंग दोनों फील्ड्स में लंबे समय तक काम किया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कल्चर, हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ को अपनी बुक्स के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाया।
0: उन्होंने इंग्लिश में काफी बुक्स लिखी। उनकी प्रसिद्ध बुक्स में द काजीरंगा ट्रेल, द अहोम्स, यूनिकॉर्न्स और द ब्लाइंड विटनेस जैसी रचनाएं शामिल है। उनकी राइटिंग स्टाइल आसान, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव मानी जाती है।
1: साथ ही अनूप कुमार दत्ता की बुक्स सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाती, बल्कि रीडर्स को नेचर, वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिच हेरिटेज से भी जोड़ती है। यही वजह है कि उनकी बुक्स स्टूडेंट्स और यंग रीडर्स के बीच काफी पसंद की जाती है।
0: अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्हें चिल्ड्रंस लिटरेचर और जर्नलिज्म के में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल और रीजनल ऑनर्स से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी रचनाओं ने इंडियन लिटरेचर में एक अलग पहचान बनाई है।
1: साथियों, अनूप कुमार दत्ता की जर्नी हमें यह सिखाती है कि अच्छी राइटिंग सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि सोसाइटी और कल्चर को समझाने का एक नया पर्सपेक्टिव भी देती है। साथियों, अब स्पेशल सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज की, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। अपनी पावरफुल वॉइस और सोलफुल सिंगिंग की वजह से उन्होंने लाखों म्यूजिक लवर्स का दिल जीता।
0: बिल्कुल, मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही उन्हें म्यूजिक का शौक था और आगे चलकर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को अपना करियर बना लिया।
1: साथियों, 1980s और 1990s में मोहम्मद अजीज ने बॉलीवुड के कई सुपरहिट सॉन्ग्स गाए। उन्होंने लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल, पप्पी लहरी, अनु मलिक और कई दूसरे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया।
0: उनकी आवाज अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल जैसे कई बड़े एक्टर्स को खूब पसंद आई। उनके लोकप्रिय गीतों में माय नेम इज लखन, मर्द टांगे वाला, आजकल कुछ याद और रहता नहीं और कई डिवोशनल सॉन्ग्स भी शामिल है।
1: मोहम्मद अजीज की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी हाई पिच सिंगिंग, क्लियर प्रोनंसिएशन और इमोशन से भरपूर परफॉर्मेंस। इसी वजह से उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली, उड़िया और कई दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में भी हजारों गाने रिकॉर्ड किए।
0: उनका म्यूजिक आज भी लिसनर्स के बीच उतना ही पॉपुलर है और नई जनरेशन भी उनके सॉन्ग को उतना ही पसंद करती है। उनका सफर हमें सिखाता है कि टैलेंट, डेडिकेशन और पैशन इंसान को हमेशा यादगार बना देता है।
1: तो साथियों, मोहम्मद अजीज सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर ही नहीं है, बल्कि इंडियन प्लेबैक म्यूजिक के एक सुनहरे दौर की पहचान भी है। तो आइए सुनते हैं उनका एक गीत।

0: जान ऐप से बचें।
1: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं एफएम रेडियो लेक सिटी की प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
3: रेडियो लेक सिटी, लेक सिटी।
2: हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIRM यानी NEWSONAIR ऐप। यही आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
4: नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन।
2: अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनो

0: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
1: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो साहिल, अब हम बात कर रहे हैं कार्ल लुईस की, जिन्होंने दुनिया के सबसे महान ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स में गिना जाता है। अपनी इनक्रेडिबल स्पीड और लॉन्ग जंप परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्होंने एथलीट्स में एक अलग पहचान बनाई है।
3: बिल्कुल चिन्मय, साथ ही बता दें कि कार्ल लुईस का जन्म 1 जुलाई 1961 को अलबामा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट एथलेटिक्स में था और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जगह बनाई।
2: कार्ल ने स्प्रिंट इवेंट्स के साथ साथ लॉन्ग जंप्स में भी शानदार परफॉर्मेंस दी। कई सालों तक उन्होंने लॉन्ग जंप्स में अपना डोमिनेशन बनाए रखा और लगातार बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स जीते।
3: बिल्कुल, और अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 9 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में भी उन्होंने 8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ओलंपियन ऑफ द सेंचुरी के टाइटल से नवाजा गया।
2: उनकी स्पीड, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उन्हें एथलीट्स की दुनिया में एक बड़ा लेजेंड बना देती है। आज भी कई यंग एथलीट्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं।
3: कार्ल लुईस की जर्नी हमें सिखाती है कि टैलेंट के साथ अगर हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ हो तो दुनिया का कोई भी गोल हासिल किया जा सकता है।
2: अब आगे बात करते हैं दिलीप सरदेसाई की, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट में सबसे भरोसेमंद बैट्समैन में गिना जाता है। अपने काम, एटीट्यूड और शानदार बैटिंग की वजह से उन्होंने इंडियन क्रिकेट में एक खास पहचान बनाई है।
3: बिल्कुल, साथ ही साथ दिलीप सरदेसाई का जन्म जो है 8 अगस्त 1940 को गोवा में हुआ था। उन्होंने 1960s और 1970s में इंडियन क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और कई यादगार इनिंग्स खेली।
2: उनके करियर का सबसे यादगार दौरा था 1971 का वेस्ट इंडीज दौरा। उस सीरीज में उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए 642 रन बनाए और इंडिया के ऐतिहासिक सीरीज विन में बड़ी भूमिका निभाई।
3: उस जीत ने इंडियन क्रिकेट का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बदल दिया। इसी परफॉर्मेंस की वजह से दिलीप सरदेसाई को उस टूर का सबसे बड़ा हीरो माना गया।
2: अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 13 सेंचुरीज 22 हाफ सेंचुरीज की मदद से 3,442 रन बनाए। उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने इंडियन बैटिंग को एक नई मजबूती दी।
3: दिलीप सरदेसाई की जर्नी हमें सिखाती है कि पेशेंस, हार्डवर्क और टीम स्पिरिट किसी भी खिलाड़ी को सबसे बड़ी ताकत दे सकती है।

0: जाए तो। अब नजर डालते हैं 2 जुलाई को इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर।
1: सबसे पहले बात करते हैं भारत की। 2 जुलाई 1940 को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया था। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों से ब्रिटिश शासन जो है वो चिंतित था।
0: विश्व इतिहास की बात करें तो 2 जुलाई 1964 को अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट लागू हुआ, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर नस्लीय भेदभाव को कानूनी रूप से समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रखा।
1: इस दिन 1937 में विश्व प्रसिद्ध महिला वैमानिक अमेलिया ईयरहार्ट अपने विश्व भ्रमण के प्रयास के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। उनका यह सफर आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है।
0: इसके अलावा 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है।
1: तो ये थी 2 जुलाई से जुड़ी इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं, जिन्होंने अपने अपने समय, दुनिया और भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी।

0: युवा श्रोताओं ने सुना अपना कार्यक्रम युववाणी, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने ये स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न

पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंग्लैंड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हवा गणी सा राम राम सा। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा राजस्थानी गीतों का लोकगीतों का कार्यक्रम झुमको। गुरुवार की इस खूबसूरत शाम में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और ढेर सारी मुस्कान के साथ रागिनी हाजिर है। कहते हैं ना पधारो हमारे देश, ये सिर्फ एक स्वागत नहीं बल्कि राजस्थान की मेहमान नवाजी की पहचान भी है। आइए शुरू करते हैं आज का ये झुमको कार्यक्रम इस लोकगीत के साथ।

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सुनहरा करियर बनाने का सपना अब होगा साकार। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर, भारत सरकार व राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित और NCHMCT से संबद्ध उदयपुर का एकमात्र संस्थान लेकर आया है 3 ईयर्स BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स फूड एंड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस में। 100% प्लेसमेंट, अनुभवी फैकल्टी और सीमित सीटें, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें, संपर्क करें 8209927383 और 9928164634 पर। हमारी वेबसाइट है www.sihmudaipur.com। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी।

असा राजस्थानी लोक गीत सुनने लगे कि रेगिस्तान की ठंडी हवा काना में मीठी मीठी धुन घोल रही है। मिस्टर काले शुक्रवार है, आज गुरुवार शाम है, जिनको कार्यक्रम आप सुन रहे हो, ऑफिस भी आप सब जना निकल गया होगा, कार में चलता चलता राजस्थानी गीता रो आनंद आप लेता होगा और साथे हाथे ये लोकगीत गुनगुनाई रहा भी होगा। आगे यो राजस्थानी लोकगीत एक और खुनोसा, यो लोकगीत जो बार आप सुन रहे हैं आकांक्षा शर्मा री आवाज में हो।

अबार फागण रो महीनो तो नहीं चल रियो है, जेठ खत्म वियो है, आषाढ़ लाग वियो है, लेकिन ऐसा लोकगीत हुन ने आपना पैर जरूर थिरक जावे, क्योंकि राजस्थान की पहचान सिर्फ किला हवेलिया नहीं है, अटारा लोकगीत भी है जो पीढ़ियां लोगारा दिला में बसिया थका है। अगर ऐसा लोकगीत रेडियो में चल रहा है और गन रहा दादी और नानी अगर ऐसा गीत गुनगुनावे तो समझ जाओ कि पूरा परिवार बिना बुलाए ही वनारा पास में इकट्ठो हो जाएगा। असोई वे वे राजस्थानी लोकगीतारो प्यार आओ सुनासा अगलो राजस्थानी लोकगीत।

और राजस्थानी लोकगीत आप सीमा कंवर की आवाज में सुन रहे हैं सा। और यो राजस्थानी गीत मिलो जिलो से गीत था जिमें आजकल आप इन्हें रीमिक्स के वहां शाम रात 6:30 होया है और अब वक्त है एक छोटू सो अंतराल रो इरा बच्चे वापस झुमको कार्यक्रम में आप और माँ मिला हासा।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
0: अनजान ऐप से बचे।
2: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सुनहरा करियर बनाने का सपना अब होगा साकार। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर, भारत सरकार व राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित और NCHMCT से संबद्ध उदयपुर का एकमात्र संस्थान लेकर आया है 3 ईयर्स BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स फूड एंड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस में। 100% प्लेसमेंट, अनुभवी फैकल्टी और सीमित सीटें, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें, संपर्क करें 8209927383 और 9928164634 पर। हमारी वेबसाइट है www.sihmudaipur.com। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी।

अबा तो नवल बनेरी घोड़ी कई दरवाजा पे पहुंच रही वेगा, कई जगह अलग अलग जगह पे सावा है और अबे तो अणी सावारी धूम मची तकी है जी। मैं आपने भी कदी न कदी अनादा नामे जानू इस वेगा। आप सुनते हो राजस्थानी लोकगीतारो कार्यक्रम झुमको, आओ सुना सा यो अगलो राजस्थानी लोकगीत।

सुंदर गोरिये नादान गोरिये, आजकल मोबाइल में हजारों गाना वे, लेकिन जिस तरह राजस्थानी ढोलक और सारंगी की आवाज सुनाई देवे, पैर अपने आप ही थिरकवा लग जावे। और अगर यूं कहवा कि हर उम्र रा लोगा ने ये राजस्थानी लोकगीत अपने आसपास जोड़ देवे, बच्चा हो बड़ा हो या बुजुर्ग, सबरा चेहरा पर मुस्कान आई जावे। एक और राजस्थानी लोकगीत आप यू हुनो साहब।

आशा सप्रारी आवाज में यो राजस्थानी लोकगीत अबारा खून रहा और अबे झुमको कार्यक्रम रो आखरी राजस्थानी लोकगीत हुनो सा।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आपने सुना, हजरत जयपुरी के बोलते, संगीत सचिन देव बर्मन का था, फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और अब लता मंगेशकर की आवाज गूंज रही है।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना भी आपने सुना है लता मंगेशकर की आवाज में।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ।
2: है?
1: नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह।

लेन देन अब है आसान। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सुनहरा करियर बनाने का सपना अब होगा साकार। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर, भारत सरकार व राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित और NCHMCT से संबद्ध उदयपुर का एकमात्र संस्थान लेकर आया है 3 ईयर्स BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स फूड एंड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस में 100% प्लेसमेंट, अनुभवी फैकल्टी और सीमित सीटें। तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें। संपर्क करें 8209927383 और 9928164634 पर। हमारी वेबसाइट है www.sihmudaipur.com। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी।

0: से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में

0: करती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

Özür dilerim. Ceybala. आप हैं विविध भारती के साथ।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: तो चूंकि बात आपके दूरदर्शन से जुड़ी है और साथ ही आपके कला से भी जुड़ी बातें हैं, आप एक कलाकार हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और आप फिल्मकार भी हैं। आपने थिएटर पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि किस तरह का थिएटर आपने किया और साथ ही जो हिंदी के बड़े बड़े लेखकों के नाटक मंचित किए गए या मंचित आज भी किए जाते हैं, तो हिंदी साहित्य और समाज को बेहतर रूप से समझने में शौकिया रंगमंच की क्या भूमिका रही आपकी नजर में?
2: देखिए, ऐसा था कि हम तो कॉलेज में थे तो बेसिकली क्या हुआ कि जब एक हमारा यूथ फेस्टिवल होता था कॉलेज में, तो उसमें कुछ लोगों को बुलाते थे भी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो ड्रामे में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आ जाइए। तो हम तो थिएटर से दूर दूर से कोई मतलब नहीं था, तो मैं चला गया साथ में। तो मैंने कोई एक लड़का कोई कर रहा था किसी का रोल, वो कर नहीं पा रहा था। तो जो हमारे डायरेक्टर आए थे सिलेक्शन के लिए, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे,
1: एनएसजी से।
2: तो उन्होंने देखकर कहा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो फिर भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पीछे से जैसे जो मैंने कहा, भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे क्यों नहीं करते हो, कितनी बार कह चुके हैं सर
1: जी।
2: तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला आप आके क्यों नहीं कर देते। तो मैंने पहले तो मना किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो मैंने उसको बताने के लिए वो किया और शॉर्टकट ये है कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया
1: जी।
2: उन्होंने कहा कि आप करेंगे ये रोल
1: जी। जी,
2: ऐसे ड्रामे का इंटरेस्ट हुआ। फिर ये हुआ कि यूथ फेस्टिवल में मैं ड्रामा डायरेक्ट भी करवाता था डिफरेंट कॉलेजेस में, और उन दिनों तो हमारे बादल सरकार के विजय तेंदुलकर के
1: जी, जी।
2: जो नाटक थे वही हम करवाते थे। और एक मैंने प्ले करवाया था, मुझे याद है, बासी खबर। जी, तो काफी उसको अप्रिशिएशन मिला, अवार्ड भी मिला। तो इस तरह से ड्रामे में रहे और फिर हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एनएसजी के नाटक देखते भी थे। और इस तरह से नेशनल स्कूल ड्रामा के जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे दोस्त

0: बन गए, तो उनसे भी सीखने को मिला। तो इस तरह से नाटक से हम जुड़े रहे स्टेज के, और स्टेज के नाटक के बाद हमें लगा कुछ कि फिल्म लाइन की तरफ भी देखा जाए ये क्या है
1: जी।
0: और इस तरह से मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद दोस्तों के साथ इधर उधर बात करते रहते थे, क्योंकि हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था फिल्म में, लेकिन एक जुनून था, एक पागलपन था कि हम कुछ क्यों ना करें। तो उसकी वजह से फिर मैंने मुंबई के चक्कर भी लगाए, यहाँ मिला, इधर मिला, उधर मिला, फिर ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि हमें एक फाइनेंसर मिला, और फाइनेंसर ने कहा कि आप बनाइए, तो मैंने शुरू कर दी फिल्म। और गाने जब मेरी फिल्म के मैंने रिकॉर्ड किए, यहीं पहले बॉम्बे लैब होती थी दादर में, वहाँ मैंने रिकॉर्ड किए गाने, तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर तो वहीं से थे, कृष्ण कैलाश, लेकिन अरेंजर जो है उत्तम सिंह थे।
1: अच्छा, संगीतकार उत्तम सिंह।
0: जिन्होंने महान संगीतकार, कितना काम किया।
1: पिछले दिनों ही वो विविध भारती के स्टूडियो में आए थे अपना इंटरव्यू देने, तब उनकी बातें सुनकर तो हम हैरान रह गए।
0: नहीं नहीं, बहुत ही अच्छे और इतने बढ़िया नेचर के हैं वो, तो वो हमारे अरेंजर थे। तो हमने फिर अपनी तरफ से तो यही कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा जो है काम करें, और उसमें क्या किया कि हमें एक अंदर से इच्छा जागी मेरी कि आशा भोसले जी, यानी आशा दीदी और आशा ताई भी उनको बहुत प्यार से लोग कहते थे, और आज भी हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन मैं दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरी फिल्म में हाँ की।
1: अच्छा।
0: हाँ, उन्होंने मेरी फिल्म में एक गाना गाया
1: जी।
0: और ये आज तक मेरी फिल्म में पहला और आखिरी गाना था उनका
1: जी, जी।
0: जो उन्होंने गाया।
1: तो ये कौन सी फिल्म थी? इसका
0: ये फिल्म का नाम था छन्नो,
1: हरियाणवी फिल्म थी
0: छन्नो। हाँ, हाँ। और इसमें जो सिंगर थे आशा भोसले जी थी, सुरेश वाडेकर जी, अनुराधा पौडवाल और दिलराज को।
1: अरे वाह।
0: और इस फिल्म की जो मेन लीड हीरोइन थी वो साधना सिंह थी।
1: अच्छा,
0: जिन्होंने नदिया के पास
1: जी जी, वो भी अभी कुछ ही दिन पहले आगे गई विविध भारती के स्टूडियो में
0: जी।
1: साधना जी, और उनसे हमने हमारे ही किसी साथी ने लंबी बातचीत की है
0: जी जी। तो बड़ा मतलब एक अच्छा रहा वो भी एक जर्नी जो है। और फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट था, और फिल्म जब रिलीज हुई तो मुझे अपना बचपन याद आता था, जब हम वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में विंडो में हाथ डालकर टिकट लेते थे, और कई बार हाथ छिल जाते
1: जी,
0: थे
1: जी, जी।
0: तो वो सब चीजें जब मैंने अपनी फिल्म के लिए देखी, लोगों का जो जुनून था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जी, और मैं आपको रोहतक लिबर्टी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, वहाँ पर सीट थी मेरे ख्याल में 900 या 1000 के करीब थी, लेकिन वो लोग जो है थिएटर वाले कुछ अपना हिसाब किताब क्या जुगाड़ करते थे, तो वो 300-400 एक्स्ट्रा सीटें
1: लगा देते थे।
0: और वो जो जब आप अपनी फिल्म की वो लोगों की सीटियां और तालियां सुनते हैं, सारा आपका जो आपने मेहनत की है
1: वो सफल हो जाती
0: है, वो सफल हो जाती है।
1: तो आपने भी क्या अपनी फिल्मों में कोई फूहड़पन या ऐसा कोई मसाला डालने की कोशिश की?
0: नहीं, मैंने अपनी फिल्म में, और मेरा कोई सेंसर कट नहीं था फिल्म के अंदर
1: जी।
0: क्योंकि सेंसर सर्टिफिकेट हमें पहले मुंबई से मिलता था, पहले उसको बॉम्बे बोलते थे, और मैंने ऐसी कोई नहीं कही है, क्योंकि उस तरह का मेरा अपना नेचर नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस देश में साफ सुथरी चीज बहुत लोग देखना चाहते हैं
1: जी, जी।
0: और अगर चंद लोग फूड चीज देखना चाहते हैं तो मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता
1: जी। तो सुभाष जी, अभी एक शॉर्ट फिल्म का टीजर आया है आपकी एक फिल्म का, उसका क्या विषय है और क्या नाम है, इसके बारे में हमारे श्रोता जानना भी चाहेंगे।
0: श्रोताओं, मैं एक फिल्म बहुत पहले मैंने बनाई थी, शॉर्ट फिल्म सावधान।
1: सावधान
0: जी। और उस फिल्म को पहले, बहुत लंबी स्टोरी है कि ये हम उसको सीरियल बनाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा वो सीरियल अप्रूव हो गया था, और जो भी है उसके बाद फिर अभी कुछ वर्षों के बाद लगा कि नहीं उसको शॉर्ट फिल्म बना के उसको रिलीज किया जाए। तो सावधान फिल्म जो है मेरी बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पे है, वाइल्ड एनिमल्स मिंगल विद ह्यूमन लाइव्स, यानी कि जो जंगली जानवर हैं वो आदमियों के साथ किस तरह का उनका रिलेशन है, किस तरह

0: का उनको रिलेशन रहा था और आज भी हम जंगल में जंगली जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और एक चीज नई शुरू हो रही है, आप देख रहे होंगे कि लोग बाग जीप में बैठ के जाते हैं और बड़े खुश होकर फोटो डालते हैं, देखिए टाइगर हमारे आगे से जा रहा है। तो आपके घर के बाहर अगर शहरों में टाइगर घूमे तो आपको कैसा लगे, ये मेरी सोच।
1: बहुत बड़ी बात, तो उन्हें कैसा लगता होगा जब हम उनके क्षेत्र में जीपे लेकर घूमते हैं बेधड़क, तो ठीक उसी प्रकार उनको भी लगता

0: तो आपको कैसा लगे ये मेरी सोच।
1: बहुत बड़ी बात, तो उन्हें कैसा लगता होगा जब हम उनके क्षेत्र में जीपे लेकर घूमते हैं बेधड़क, तो ठीक उसी प्रकार उनको भी लगता होगा जैसे हमें लगेगा कि हमारे घर के आगे से टाइगर या चीता निकल गया है
0: जी। और एक चीज मैं सावधान के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये सावधान में जो म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन साहब ने दिया था।
1: अच्छा
0: जी,
1: दादा ने
0: और इसके जो सिंगर थे मोहम्मद अजीज साहब थे, और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो प्रीतम दा ने दिया था।
1: क्या?
0: और प्रीतम दा ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, और उस वक्त भी मैं कहता था कि प्रीतम दा एक दिन बहुत महान संगीतकार बनेंगे, और वो बने
1: जी।
0: उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं चेक उनको देने लगा छोटा सा, तो उन्होंने मैंने कहा कि प्रीतम दा इसका नाम क्या लिखूं आपका, स्पेलिंग क्या नाम की, तो उन्होंने कहा था सुभाष जी आप कुछ भी नाम लिख दीजिए, ये मेरी जिंदगी का पहला चेक।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और मैं आज प्रीतम दा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, और आज तो वो हिंदुस्तान के जिसको कहते हैं बहुत बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं। तो इस तरह से ये रहा, और जल्दी इसको रिलीज करेंगे
1: जी।
0: और मेरे दर्शकों को श्रोताओं को
1: ये देखने को मिलेगी। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये फिल्म दर्शक देखे और उसको प्रोत्साहित करे। एक फिल्मकार होने के नाते आगे आपकी क्या योजना है, आप कम से कम शब्दों में हमें बताएं।
0: जी मैं एक फीचर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, और पिछले कुछ दिनों से मैं एक अच्छे सब्जेक्ट की तलाश में हूँ
1: जी।
0: जी, और मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा हूँ और सब चीजें हो रही हैं। जिस दिन मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि रीजन क्या है कि आज के टाइम में बहुत फिल्में बन रही हैं, और उसमें से बहुत सी अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन जो विषय मेरे दिल को भा गया मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा और लोगों के सामने आएंगी। अब लोग तो खुद ही देख के बताएंगे कि कैसी बनी कैसी नहीं, लेकिन मैं फीचर फिल्म बनाने की एक इच्छा है।
1: बहुत सुंदर, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो और हमें देखने को मिले।
0: थैंक यू।
1: तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए दिया है। विविध भारती परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं।
0: थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं विविध भारती और अपने विविध भारती के श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम,
1: शुक्रिया।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते।
2: और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी, उस हमारे लेट लतीफ पति देव अभी तक नहीं लौटे।
3: सिकंदर भाई
1: कौन है? अरे भाई भैया
3: सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसी गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर?
2: इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो बट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला
3: ट्यूशन पढ़ने? तो नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ?
2: नहीं तो।
3: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
3: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की।
2: फिर वही इमाम दस्ते की मूसली? अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
3: मिक्सी? इमाम दस्ता हो?
2: पर भट भैया बात क्या है, कुछ बताओ तो भट भैया।
3: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
2: चप्पल?
3: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
4: शुक्र है सुब्रमण्यन साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना हो अभी तक। अरे फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए मर गए, मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
5: तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुसक विलंबित।
4: सर वो
5: देखा मिस्टर भट्ट,
3: विलंबित जो ठहरे सुपरिटेंडेंट साहब।
5: तो श्रीमान विलंबित जी,
4: जी
5: अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है?
4: जी सुपरिटेंडेंट साहब वो बात ये है।
5: बोलो बोलो, मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाने।
4: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिटेंडेंट साहब।
5: अरे मगर क्यों, अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं।
4: जी वो मैं समझा नहीं सर।
5: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे।
4: कैसा सिलसिला?
5: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी, कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई।
4: जी हाँ जी हाँ।
5: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे, क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके।
4: जी हाँ जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर।
5: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया, अपने ससुर जी की पहली बरसी।
4: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
3: मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद 2-2 साले हैं।
4: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ श्राद्ध खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा?
5: ओ आई सी।
4: जी सुपरिटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था?
3: जी हाँ सुपरिटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है, जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना पिता।
4: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट, देख लिया सुपरिटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब?
5: छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर, एक तो आप लेट आए।
4: तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर, क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे, डांटने का हर सर आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है, ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क, अपना काम देखें।
3: हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर।

0: जब आप सीट पर नहीं होते।
1: तो ऐसी कौन सी आफत आ रही है?
2: डॉग्स हैज मिस्टर सिकंदर, ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते, घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है? चलिए चीफ के पास।
3: नहीं सुपरिटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता?
2: क्यों, आज क्या हुआ बोलो।
3: वो सर, मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर।
2: अरे ये कैसे हो गया सिकंदर?
3: सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट, रास्ते में चप्पल भी टूट गई।
2: और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा?
3: हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा। मुझे पता था सर कि अर्जेंट पेपर डील करने हैं।
2: ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर।
3: ऑलराइट सर।
2: मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे?
3: वो इमाम दस्ते की मूसली गिराजी मेरी लड़की ने उसके पैर पर।
2: ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा
3: लड़का? क्या मालूम कैसा है सर, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था। अब तो घर शाम को पहुँच कर ही देखूंगा।
2: अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर। क्यों सुपरिटेंडेंट साहब?
1: कोई बात नहीं, मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर।
2: वो मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए, हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर।
1: अच्छा मिस्टर सिकंदर, अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है, एक दो घंटे बाद चले जाना।
3: थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
4: हाय राम, 3 बजे के चले अब तक घर नहीं पहुंचे? और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है। नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है।
2: आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ। हद होती है बहानेबाजी की भी, मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और
4: उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं।
2: तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं।
4: पक्के से पक्के कहो बट भैया, कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझ कर। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए। अरे भैया तुम उनके साथ ही हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत, हम तो भट्ट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं।
2: और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए बहानों का सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें।
4: मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट्ट भैया।
2: अगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है?
4: नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है।
2: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राह रास्ते पर तो आ जाएंगे।

0: हाय राम, अभी तक गुसल खाने के फवारे के नीचे भरत नाट्यम कर रहे हैं।
1: अजी सुनते हो?
2: अरे क्या है, आ रहा हूँ।
1: घंटे भर इस फुवारे की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं, तब तो नहीं जाना आज क्या?

0: जी माँ, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे हो। मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे? फंसोगे किसी दिन बुरी तरह, श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी।
1: अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सर पकाकर हमदर्दी जताने लगता है और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है।
0: हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लती।
1: और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा।
0: चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ।
1: अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग।

0: चलो बेटा सिकंदर भाई पत्नी का दर्द। ओके बाय।
1: ये सर मैं सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ।
2: अरे सुपरिंटेंडेंट साहब तुम बैठे भीतर कमरे में।
1: यस सर मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक है सर। जी हाँ मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आए सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी मैं कोशिश करता हूँ सर।
2: अरे बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बना देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ बेटा ने कहा। हाँ चुपचाप यहाँ से दबे पाँव घर लौट जाऊँ और बीमारी की छुट्टी मार दूँ। अरे नहीं,
3: वो फाइल तो मेरी ड्रॉअर में बंद है। ये चाबी लेने मेरे घर पहुंचे तो इस अर्जेंट केस के लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं इस इमरजेंसी की घड़ी में।
0: अरे वो मारा, ये कुछ हुई ना नई बात है। ठीक है,
4: गुड मॉर्निंग सर।
1: ओ यू विलंबित के बच्चे।
4: यस सर।
1: आज तुमने मेरी सारी इज्जत पट्टी में मिलवा।
4: नो सर।
1: मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया।
4: नो सर।
1: मैं तुम्हें डिसमिस कराकर छोड़ूंगा। यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट।
5: मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिंटेंडेंट साहब, मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो
1: सकती है। इमरजेंसी क्या हुआ, कौन मर गया, कौन अस्पताल चला गया, बोलो।
5: सर मेरी पत्नी था।
1: क्या?
5: मेरी बीवी।
6: ये क्या कह रहे हो सिकंदर भाई, कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया?
5: एकदम से वो उल्टियां सर, दम घुटने लगा, फिर उल्टियां, उल्टी ऊपर उल्टियां सर, मैं घबरा गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया।
6: तब तक क्या क्या हुआ, क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
5: सर।
6: हाँ बोलो।
5: उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर। सर के वो
6: हाँ बोल भाई बोल।
5: वो पाँव भारी है।
6: पाँव भारी है, यानी कि नए बच्चे की माँ बनने वाली।
1: आपको कोई तकलीफ है? आई से शट अप। यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
4: सुपरिंटेंडेंट साहब आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
1: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पाँव भारी है। आई से इट इज इम्पॉसिबल।
6: मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं? सर सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आई जाएगी सर।
1: सच्चाई? अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो तो ये देखो, ये रही सच्चाई।
6: ये कैसे कागज है सर,
1: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
4: यस सर। अरे सर ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
1: ऑर्डर नहीं, अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
4: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
6: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
4: यस
6: सर। कौन हकदार होता है इस स्पेशल इंक्रीमेंट का?
1: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठा दे।
6: मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर?
1: ये भी जानना चाहते, ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज, बोलो।
5: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग, यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
1: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है?
4: बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
1: आई विल सी दैट यू आर
4: डिसमिस्ड। मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा।

सिलसिला बहानों का। अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र कौशिक का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है, सुन कटे फटे हैं पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
2: कूल रहो।
3: ये देखो कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे बॉय।
5: और मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो माँ, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो माँ।
8: आरबीआई कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सुनहरा करियर बनाने का सपना अब होगा साकार। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर, भारत सरकार व राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित और NCHMCT से संबद्ध उदयपुर का एकमात्र संस्थान लेकर आया है 3 ईयर्स BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स फूड एंड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस में। 100% प्लेसमेंट, अनुभवी फैकल्टी और सीमित सीटें, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें, संपर्क करें 8209927383 और 9928164634 पर। हमारी वेबसाइट है www.sihmudaipur.com। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उदयपुर। आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी।

परिणीत फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना। अब मोहित चौहान और ए आर रहमान की आवाजों में ये गाना सुनिए। फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खड़खोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत

0: और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
1: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
2: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
1: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निरीक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निरीक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निरीक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निरीक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने

0: www.rtv.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांधरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुँचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: इसके साथ अब आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

दोस्तों लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शान।

2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।

मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।

0: मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का

गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन, न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों

आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूं तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूँ जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जान

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हो, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: आज के छाया गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वजितंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अदा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना वासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: रात्रि के 11 बजने वाले हैं, लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहाँ से कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में, दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, बस कुछ पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को

0: और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi

Die Erfahrung.

tenido

Football.

कमी है, लेकिन मैं आपको एक बात

samedi à